राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

सुनने वालों, आज मैं आपको बताऊंगी पशु पक्षी शकुन विचार। यानी पशु पक्षी जब दिखाई देते हैं तो कैसे शकुन होते हैं। कीट पतंग आदि पर शकुन। यदि कीट पतंग वृक्ष आदि से निकले तो अनावृष्टि। यानी कि सुनने वालों, कीट पतंग जैसे लाइट वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा, एक मच्छर मॉस्किटो ऐसे घूमते रहते हैं, अगर वो हमें किसी वृक्ष में से निकलते दिखाई दिए तो उसका मतलब है कि वो अच्छी बात नहीं होती। चींटियों पर शकुन। यदि चींटियां सिर के ऊपर वाले छत के भाग से निकले तो शीघ्र ही धन संपत्ति भोग सामग्री की प्राप्ति। सुनने वालों, यदि चींटियां हमें छत के ऊपर से निकलती दिखाई दें तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। धृत पात्र में घुसकर आहोरात्रि वही रहे। धन नाश चोरी। लाल घर के ऊपर से निकले चोरी भय प्राण भय। चावलों में से निकले धन की वृद्धि। काली कोशा ग्रह से निकले धन की अत्यंत वृद्धि। अधिक सीलन या भूसे आदि से चींटियां निकले तो फल रहित। काली अंडे रहित वर्षा का आगमन। उत्तर दिशा से चींटियां निकले तो सुख देने वाली। पूर्व दिशा से चींटियां निकले 12 घंटे तक भय रत। दक्षिण दिशा से चींटियां निकले तो लाभ। पश्चिम दिशा से चींटियां निकले धन संपत्ति का लाभ। अग्नि कोण दिशा से चींटियां निकले 12 घंटे तक अग्नि भय। वायु दिशा से चींटियां निकले ईंधन की प्राप्ति। ईशान दिशा से चींटियां निकले लड़ाई की सूचक।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कान खजूरा संबंधी शकुन। किसी कार्य वंश घर में जाते समय बाईं ओर से मिल जाए तो शुभ होता है, चलते समय दाईं ओर से मिल जाए तो हानिकारक, लड़ाई झगड़ों और गृह क्लेश का कारण होता है। मार्ग में चलते समय रास्ता काटे बिल्ली से ज़्यादा हानि होती है। किसी प्रकार सिर पर चढ़ जाए तो अत्यंत कष्ट होता है। सुनने वालों, कान खजूरा वो है जानवर कि जो कान के अंदर घुस जाता है। अब डच में क्या कहते हैं वो मेरे को नहीं पता।

सर्प संबंधी शकुन, यदि सर्प दिखाई दे यानी कि सांप अगर दिखाई दे तो उसके क्या शगुन होते हैं। किसी भी कार्य से जाते समय अगर सांप मिल जाए या सांप दिख जाए तो अशुभ और वापस लौट जाना चाहिए। बाईं ओर दिखाई दे तो अशुभ है। मार्ग में काला नाग दिख जाए तो वो भी अशुभ है। नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो धन गड़ा होना, तो उसका मतलब है हम जिसको नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो उनके धन की प्राप्ति होगी। ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ अगर सांप दिखाई दे तो उच्च पद प्राप्ति होगी। फन को ऊंचा करके बैठा हुआ सांप मिल जाए अत्यधिक शुभ होता है सुनने वालों।

भौरा संबंधी शकुन। सुनने वालों, भौरा वो होता है जो लकड़ी के घर में अपना घर बना के रहता है। अगर हम उसको वहाँ से हटाएंगे तो वो हमारे ही पीछे पड़ जाता है, और कई बार इतना ज़ोर से डंक मारता है कि उसके डंक में जहर होता है और उसका असर बहुत बुरा होता है। और उसी का है भौरा संबंधी शकुन। यदि यात्रा समय या गृह कार्य समय भौरा मिल जाए तो बाईं ओर किसी फूल पत्ते पर बैठा हो शुभ शकुन। अगर भौरा किसी फूल और पत्ते पर बैठा हो तो उसका शुभ शकुन होता है। बाईं ओर आ जाए हितकर तो उसका बुरा शकुन होता है। सामने घूमता दिखे भौरा, अगर हमारे सामने उड़ता हुआ दिखाई दे तो बहुत लाभदायक होता है। फूलों पर घूमता दिखाई दे तो कष्टकारी होता है।

मधुमक्खी संबंधी शगुन। मधुमक्खी को तो आप सब जानते हैं सुनने वालों, हॉनिंग बाइट यानी जो शहद बनाती है, हॉनिंग बनाती है, अगर वो दिखे तो उसके क्या असर होते हैं। यदि मधुमक्खी सामने दिखाई दे तो ठीक नहीं है, बाईं ओर दिखाई दे तो शुभ धन लाभ मिलता है सुनने वालों, दाईं ओर से मधुमक्खी दिखाई दे तो परिश्रम पर पानी फेर दे, जितने भी हमने मेहनत की है उस पर सब पानी फेर देती है। यदि पीठ पीछे दिखाई दे तो हानिकारक होती है, लौटते समय दाईं ओर दिखाई दे शुभ आहार प्राप्ति तो हमें शुभ समाचार मिलते हैं और अच्छा खाने की प्राप्ति होती है सुनने वालों।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। चकवा संबंधी शकुन। चकवा एक पक्षी का नाम है सुनने वालों, और वो कैसा दिखता है, कैसा रंग है, वो आप लोगों को ढूंढना चाहिए। चकवा यदि उड़ता हुआ दिखाई दे तो हानिकारक होता है, कई एक साथ बैठे हुए दिखाई दे तो अत्यंत सुख प्राप्ति होती है। यदि चकवा का जोड़ा दिखाई दे, नर और मादा, तो समृद्धि का घातक। जोड़ा अति स्वर करे शुभ नहीं। यदि चकवा नर और मादा दोनों ऊंचे स्वर में गाएं कुछ तो अशुभ होता है, वो शुभ नहीं होता सुनने वालों।

चील संबंधी शगुन। चील को तो आप सब जानते होंगे सुनने वालों, एंगल्स में उसको ईगल कहते हैं। यदि चील घर से चलते समय या घर में घुसते समय दिखाई दे, चील बोले सुख की प्राप्ति। मुंह में रोटी आदि लिए दिखे, अन्न भंडार भरे। लौटते प्रवेश समय बोले धन लाभ। घर पर आकर बैठ जाए या मंडराए अशुभ। सुनने वालों, यदि चील जोर जोर से चिल्लाती है तो इसका मतलब है कि सुख की प्राप्ति होगी, और वो मुंह में रोटी लिए हुए हमें दिखाई देती है तो हमारे अन्न के भंडार भरे रहेंगे। और यदि हम घर में प्रवेश करते हैं और वो बोले तो धन लाभ मिलता है, और घर पर आकर ऊपर बैठ जाए या मंडराए तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों,

उल्लू संबंधी शकुन। यदि उल्लू बोले, यात्रा पर जाते समय रात्रि समय अत्यंत अशुभ। दाई ओर से उल्लू बोले अत्यंत अशुभ, बाई ओर से उल्लू बोले अत्यंत शुभ। किसी के घर पर बोले अशुभ अनिष्टाकारी। दिन में उल्लू बोले अनिष्टाकारी। जाते समय हूँ हूँ करे अशुभ, जाते समय की ओर की देखे शुभ। पीठ के पीछे चले इच्छित फल प्राप्त होता है। सुनने वालों, आप तो सब जानते हैं कि उल्लू जो है पक्षी, वो दिन में सोता है और रात में जागता है। अगर कोई ज़्यादा सोए तो उसे हम कहते हैं क्या उल्लू की तरह सो रहा है। तो वो उसके सारे जितने भी कार्य हैं सब ज़्यादातर अशुभ ही माने जाते हैं। बस एक कार्य है कि अगर पीठ के पीछे चले तो इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सुनने वालों,

बगुला संबंधी शकुन। घर पर जाते समय बैठा दिखाई दे तो सामान्य फल की प्राप्ति होती है। बैठा हुआ बोल रहा हो तो कष्टकारी होता है। साधारण उछल कूद करे तो लाभकारी होता है। यात्रा समय ऊंची उड़ान भरे बहुत ही शुभ माना जाता है। सुनने वालों, बायां पैर ऊपर उठाता मिले इच्छित धन प्राप्ति होती है। अपने ही देह को निहारे यानी अपने ही शरीर को देखे स्त्री संपत्ति का लाभ। बार बार प्रवासी को देखे उसकी सारी बाधाओं को हर ले यानी कि जो बाहर से घूमने वाले लोग आते हैं अगर उनको देखे तो उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। सारस संबंधी शगुन। सारस भी एक पक्षी का नाम है, अगर वो दिखाई दे तो कैसे शगुन होते हैं। अगर सारस पक्षी मार्ग में दिखाई दे तो मेल मिलाप होता है। यदि दोनों पक्षियों का नर और मादा जोड़ा दिखाई दे तो सर्व सुख संपत्ति प्राप्त होती है। दाईं ओर से बोले अशुभ माना जाता है, बाईं ओर से बोले शुभ श्रेष्ठ माना जाता है। सम्मुख बोले तो राज सम्मान मिलता है। सुनने वालों, तोता संबंधी शगुन। तोता, यदि घर से चलते समय तोता दाईं ओर होकर बोले तो शुभ माना जाता है, बाईं ओर होकर बोले तो भय और संकट माना जाता है। सामने क्रूर वाणी बोले तो अशुभ बंधन में माना जाता है। सुनने वालों, तोता यानी पापा खाई,

मुर्गा संबंधी शगुन, इसको तो आप सब लोग जानते हैं। घर से जाते समय यदि मुर्गा देहरी पर चढ़कर बोले, यानी घर की दीवार के ऊपर चढ़कर बोले, तो बहुत लाभकारी होता है सुनने वालों। बाईं ओर से दाईं ओर आ जाए तो शुभ माना जाता है। सामने हो और बोले अधिक लाभ मिलता है सुनने वालों। दाईं ओर रहे शुभ माना जाता है, बाईं ओर रहे अशुभ माना जाता है। यदि मुर्गा हमारी पीठ पीछे बोले तो अधिक हानिकारक, शत्रु भय, प्राण भय, उस दिन घर से ना निकलें सुनने वालों। स्वाभाविक से अन्य स्वरों में अगर मुर्गा बोले तो क्लेश कारक होता है। सायंकाल घर लौटते समय बोले, अगर शाम को हम घर लौटते हैं तो अधिक कष्टकारी, परंतु जोड़ा प्रेमरत दिखाई दे तो इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। प्रत्येक पहर में अगर मुर्गा बोले तो अशुभ माना जाता है।

रिश्ता टूटे डार से कि ले गए पवन उड़ाए, यारी बिछुड़े यार से ये दुख हमसे सहा न जाए।

सुनने वालों, ये जो गीत अभी आपने सुना ये सुरीनाम के एक मशहूर कलाकार श्रीमान रामदेव चेतू जी की आवाज़ में था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, गौरैया संबंधी शगुन। गौरैया भी एक पक्षी का नाम है सुनने वालों। यदि इसकी ध्वनि हमें चींची दिन में सुनाई दे तो उसके क्या असर होते हैं, क्या परिणाम होता है। दिशा में, यदि पूर्व दिशा में और प्रथम पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य में सम्मान मिलता है। यदि दूसरे पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो आमोद प्रमोद होता है। यदि तीसरे पहर में गौरैया की आवाज़ सुनाई दे तो मित्र मिलन होता है, कि मित्रों से मिलन होता है। चौथे पहर में आवाज़ सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है। और पूर्व दक्षिण में अगर गौरैया की हमें आवाज़ सुनाई दे तो प्रथम पैर में अगर सुनाई दे तो आग से हानि और भय होता है। दूसरे पहर में सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है सुनने वालों।

दक्षिण दिशा में अगर गौरैया हमें उसका स्वर सुनाई दे तो प्रथम पहर में सुनाई दे तो जुए से धन की हानि होती है, दूसरे पहर में स्वर सुनाई दे तो व्यवसाय में वृद्धि मिलती है, तीसरे पहर में स्वर सुनाई दे तो प्रियजन में लाभ होता है, चौथे पहर में अगर स्वर सुनाई दे तो सुख वृद्धि होती है सुनने वालों।

वर्षा के दक्षिण पश्चिम दिशा में गौरैया का स्वर सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो सुख में वृद्धि मिलती है सुनने वालों, दूसरे पहर में सुनाई दे तो राज द्वारा सम्मान मिलता है, तीसरे पहर में अगर इसका स्वर सुनाई दे तो अप्रत्याशित समाचार मिलता है, अगर चौथे पहर में सुनाई दे तो मूल्यवान वस्तु मिलती है, और पश्चिम दिशा से अगर इसका स्वर सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरे पहर में सुनाई दे तो चोरों से भय होता है, तीसरे पहर में अगर सुनाई दे तो लाभ की संभावना होती है, चौथे पहर में अगर गौरैया का स्वर सुनाई दे तो अप्रिय समाचार से गहरा अफसोस होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अब मैं आपको बता रही थी गौरैया पक्षी के बारे में। वो एक चिड़िया जैसी लगती छोटी सी, और बाकी आपको खोजना है कि वो कैसी दिखाई देती है और उसका रंग कैसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। पश्चिम उत्तर, यदि गौरैया चिड़िया हमें पश्चिम और उत्तर में दिखाई दे, तो अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरे पहर में दिखाई दे तो धन की प्राप्ति होती है। तीसरे पहर में अगर हमें गौरैया पक्षी दिखाई दे तो सम्मान प्राप्ति होती है। चौथे पहर में अगर दिखाई दे तो शत्रु से झगड़ा होता है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में दिखाई दे, अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो बुरा शगुन होता है। दूसरे पहर में दिखाई दे तो पति पत्नी में क्लेश झगड़े होते हैं। तीसरे पहर में दिखाई दे वस्त्र आभूषण की हानि होती है। अगर चौथे पहर में दिखाई दे तो मृत का समाचार सुनने को मिलता है सुनने वालों।

गौरैया पक्षी अगर उत्तर पूर्व दिशा में हमें दिखाई दे, प्रथम पहर में दिखाई दे, तो चोर चोरी करता पकड़ा जाए। दूसरे पहर में दिखाई दे तो निराशाजनक समाचार मिलता है सुनने वालों। तीसरे पहर में अगर दिखाई दे तो आग से हानि होती है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में हमें ये पक्षी दिखाई दे तो यात्रा की संभावना बनती है।

कबूतर कपोत। यदि इसकी गुटर गु दिन में सुने तो क्या होता है सुनने वालों? पूर्व दिशा में प्रथम पहर में सुनाई दे तो धन का लाभ होता है सुनने वालों। दूसरे पहर में सुनाई दे तो आँख से भय होता है। तीसरे पहर में सुनाई दे तो शीघ्र ही विवाह होता है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में इसकी गुटर गु सुनाई दे तो बाधाएं पीड़ित करती हैं सुनने वालों। पूर्व दक्षिण दिशा में अगर इसकी गुटर गु सुनाई दे प्रथम पहर में सुनाई दे तो व्यवसाय में वृद्धि होती है। दूसरे पहर में सुनाई दे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। तीसरे पहर में इसकी गुटर गु सुनाई दे तो शत्रुओं का नाश होता है। चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो शुभ समाचार मिलता है सुनने वालों।

सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी, कबूतर हिंदी में कहते हैं, कपोत संस्कृत में कहते हैं, और सुरिनामी भाषा में दोइफी कहते हैं। तो अगर उसकी गुटरगू हमें दिन में सुनाई दे तो उसके क्या परिणाम होते हैं सुनने वालों। अब हम आगे चलते हैं। यदि दक्षिण दिशा में इसकी गुटरगू सुनाई दे, अगर प्रथम पहर में सुनाई दे तो अप्रत्याशित धन लाभ, दूसरे पहर में सुनाई दे खतरे की संभावना, तीसरे पहर में सुनाई दे अप्रिय घटना की संभावना, चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो शुभ समाचार। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे, प्रथम पहर में सुनाई दे शारीरिक पीड़ा, दूसरे पहर में सुनाई दे कपोतजनन में वृद्धि, तीसरे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो धन अर्जित करेगा, चौथे पहर में अगर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर पश्चिम दिशा में इसकी आवाज़ सुनाई दे तो अगर प्रथम पहर में सुनाई दे आय में वृद्धि होती है, दूसरे पहर में सुनाई दे वाहन खरीदने की संभावना, तीसरे पहर में इसकी आवाज़ सुनाई दे आगे उन्नति की आशा, चौथे पहर में अगर इसकी गुटरगू सुनाई दे तो धन लाभ निश्चित होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, अगर उत्तर दिशा में प्रथम पहर में कबूतर की गुटरगूं सुनाई दे तो चोरों का भय रहता है, दूसरे पहर में सुनाई दे तो व्यापार में लाभ मिलता है, तीसरे पहर में अगर सुनाई दे तो वाहन की प्राप्ति। सुनने वालों, अगर तीसरे पहर में इसकी गुटरगूं सुनाई दे तो हमें कोई गाड़ी, कोई भी वाहन प्राप्त हो सकता है, चौथे पहर में इनकी आवाज़ सुनाई दे तो मुसीबत की संभावना, तो समझो कोई मुसीबत आने वाली है। उत्तर पूर्व दिशा में प्रथम पहर में अगर इनकी गुटरगूं सुनाई दे तो मित्र वर्ग में वृद्धि, कि हमारे मित्रों में वृद्धि होती है। दूसरे पहर में अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे तो आग का भय, तो आग लगने का भय रहता है सुनने वालों। अगर तीसरे पहर में इनकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य दंड का भय, तो हमें कहीं से कोई भी दंड मिल सकता है। चौथे पहर में अगर इनकी आवाज़ सुनाई दे तो चोरी द्वारा धन हानि, तो हमारे धन की हानि होगी सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बाज, बाज भी एक पक्षी है सुनने वालों, जो गुरु तेग बहादुर जी थे सिखों के 10वें गुरु, उनके पास हमेशा बाज पक्षी रहता था और पुराने ज़माने में वो जगह जगह संदेश भी पहुंचाया करता था। यदि वह पूर्व दिशा में दिखाई दे, प्रथम पहर में दिखाई दे तो वर्षा में विलंब, तो वर्षा देर से होती है सुनने वालों। दूसरे पहर में दिखाई दे तो राज्य दंड, तो हमें राज्य से दंड मिलता है। तीसरे पहर में दिखाई दे तो शत्रुओं द्वारा कार्य नाश, जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे बनते हुए कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। अगर चौथे पहर में वो पक्षी दिखाई दे तो अच्छी वर्षा की आशा, तो वर्षा खूब अच्छे से होती है। और अगर दक्षिण दिशा में बाज पक्षी दिखाई दे, अगर प्रथम पहर में दिखाई दे तो सुस्वादु भोजन मिले, कि हमें स्वाद वाला भोजन मिलता है सुनने वालों। अगर दूसरे पहर में दिखाई दे तो रोग हो, तो रोग होने की संभावना रहती है। तीसरे पहर में अगर बाज पक्षी दिखाई दे तो देह पीड़ा, तो हमारे शरीर में दर्द रहता है सुनने वालों। अगर चौथे पहर में हमें बाज पक्षी दिखाई दे तो लंबी बीमारी भोगे, तो हमें कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जो बहुत समय तक चलते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, आज मैं आपको बता रही हूँ कीट पतंग और पक्षियों के बारे में कि जो हमें नुकसान भी होता है और उनसे लाभ भी मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। अगर हमें बाज पक्षी पश्चिम दिशा में दिखाई दे और प्रथम पहर में दिखाई दे तो कार्य इच्छानुसार कि जो हमने सोचा होता है कि हमारा ये कार्य हो जाए वो हमारी इच्छा के अनुसार हो जाता है सुनने वालों। और दूसरे पहर में अगर हमें बाज पक्षी दिखाई दे तो अग्निकांड, तो आग लगने का डर रहता है। तीसरे पहर में अगर ये पक्षी दिखाई दे तो यात्रा पर जाना, तो हम यात्रा पर जा सकते हैं। अगर चौथे पैर में ये पक्षी दिखाई दे तो किसी से झगड़ा, तो हमारा किसी के साथ झगड़ा हो सकता है सुनने वालों। अगर उत्तर दिशा में ये पक्षी हमें दिखाई देता है, अगर प्रथम पैर में दिखाई देता है काल का ग्रास बने, दूसरे पहर में दिखाई देता है तो धन की हानि होती है सुनने वालों, तीसरे पहर में दिखाई देता है तो संकट ग्रस्त, तो हम पे समझो कोई संकट आने वाला है, चौथे पहर में दिखाई देता है तो धन की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है सुनने वालों। सुनने वालों अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद फिर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

सुनने वालों, मैंने आपको जो ये पंछी और कीट पतंगों के बारे में बताया है, शायद उसमें से आपको कुछ ज़रूर अच्छा लगा होगा। वाणी और पानी दोनों में छवि नज़र आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नज़र आता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है सोपन विज्ञान।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी है जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

संबंध तो सुधामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं।

पक्षी है, उसके क्या क्या शगुन है उसके बारे में बतलाऊंगी। हंस के दर्शन, उसकी आवाज़ सब शुभ होते हैं, यहाँ तक कि प्रवास करते समय यदि कोई हंस का नाम लेता है तो उसकी यात्रा अच्छी होती है। प्रवास करते समय यानी यात्रा पर जाते समय, एक बार बोले तो चोरी का भय, दो बार बोले तो धन की प्राप्ति, तीन बार बोले तो दुर्घटना का भय, चार बार बोले तो किसी से झगड़ा, पांच बार बोले तो राज्य से सम्मान मिले। सुनने वालों, यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और हंस एक बार बोलेगा तो उससे हमें चोरी का भय होता है कि चोरी होगी, अगर वो दो बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होगी कि हमें रुपया पैसा मिलेगा, अगर हंस तीन बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय कि हमें चोट लगने का भय हो सकता है, अगर हंस चार बार बोलेगा तो किसी से झगड़ा भी हो सकता है सुनने वालों, और पांच बार बोलेगा तो राज्य से सम्मान मिलेगा।

अब हम आगे चलते हैं, सुनने वालों। टिटहरी, टिटहरी एक पक्षी है, छोटी सी है चिड़िया जैसी, और ज़्यादातर खेतों में बोलती है। अगर वो हो तो उससे क्या लाभ है, अब मैं ये बताती हूँ आपको। टिटहरी प्रवास करते समय इसकी आवाज़ शुभ होती है। जब ये पक्षी बोलता है और हम यात्रा पर जा रहे हैं और इसकी आवाज़ कानों में पड़े तो शुभ मानी जाती है, सुनने वालों। मोर, मोर तो आप सबको पता है सुनने वालों। मोर भूख से पीड़ित या उड़कर बाईं ओर आकर बोले, मिष्ठान की प्राप्ति। अगर मोर पक्षी हमारी बाईं ओर आकर बोलेगा तो हमें मीठा खाने को मिलेगा या मिठाई खाने को मिलेगी। यदि प्रवास कर रहे व्यक्ति को देखकर बोले एक बार तो धन की प्राप्ति, दो बार बोले तो स्त्री सुख, तीन बार बोले तो राज्य दंड का भय, चार बार बोले दुर्घटना का भय, पांच बार बोले कार्य की सिद्धि। सुनने वालों, मोर भी अगर हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को देखकर अगर वो एक बार बोलता है तो हमें धन की प्राप्ति होती है, दो बार आवाज़ करेगा या बोलेगा तो स्त्री का सुख होगा, तीन बार बोलेगा तो राज्य में दंड का भय कि हमें कोई दंड भी मिल सकता है किसी भी कारणवश, अगर चार बार बोलेगा तो दुर्घटना का भय तो चोट लग सकती है, पांच बार बोलेगा तो कार्य की सिद्धि। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी सुनने वालों।

मैना। हमेशा हम तोता के साथ मैना की कहानी ज़रूर सुनते हैं सुनने वालों। तोता मैना का एक जोड़ा होता है। तो मैना, यदि प्रवासी को मैना दिखे तो राह में अशुभ, किसी से झगड़ा तथा धन हानि। बिल्कुल सामने मैना दिखाई दे तो चोर डाकुओं से धन की हानि। पीछे की तरफ मैना दिखाई दे तो मित्र से धन हानि। बाईं ओर मैना दिखाई दो पत्नी को रोग। दाईं ओर मैना दिखे किसी पूजनीय से मन मुटाव। सुनने वालों, जब हमें मैना राह चलते दिखाई दे तो अशुभ, किसी से झगड़ा या धन हानि होती है। हमारे बिल्कुल सामने उड़कर आ जाए तो चोर और डाकुओं से धन की हानि होती है। हमारी पीठ पीछे आ जाए तो मित्र से धन की हानि होती है। बाईं ओर से आ जाए तो पत्नी को रोग होता है। दाईं ओर से आ जाए तो किसी पूजनीय से मन मुटाव, कि जो आपसे बड़ा है पूजनीय।

हैं उससे हमारा मन मुटाव हो जाएगा, हम उससे गुस्से हो जाएंगे या वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे सुनने वालों। अब हम एक गाने की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना है ये हमारे महान गायक, सूरीनाम के महान गायक श्री रामदेव चेतु जी की आवाज़ में था। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। बटेर, बटेर भी एक पक्षी है। यदि यात्रा करते समय बटेर दाहिनी तरफ आगे आकर वापस लौटे और यात्रा में वापस आते समय बाईं ओर आगे जाकर वापस लौटे तो उस व्यक्ति का आने वाला समय अति उत्तम व्यतीत होता है। तीतर, तीतर भी एक पक्षी है सुनने वालों। तीतर प्रवास कर रहे व्यक्ति के यदि तीतर बोलता है दाईं ओर बोलकर पूर्ण बाईं ओर उड़े तो उत्तम फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थात पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर उड़े तो अर्थ लाभ होता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि। पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले कार्य सफल नहीं। उच्च स्वर में आवाज़ करे कार्य में सफलता। विषम संख्या में आवाज़ करे शुभ। आकाश की ओर मुँह करके धन हानि। दोनों ओर आवाज़ करे उत्तम शगुन। सुनने वालों, तीतर अगर किसी यात्री के दाईं ओर बोलकर पूर्ण बाईं ओर उड़े तो उससे उत्तम फल, अच्छा फल प्राप्त होता है। लौटते समय विपरीत अर्थ पहले बाईं ओर बोलकर बाद में दाईं ओर बोले तो अर्थ लाभ कमती मिलता है। बाईं ओर तीतर बोले कार्य में सफलता मिलती है। पहले पीछे बोलकर फिर दाईं ओर बोले अभीष्ट सिद्धि तो उसका गलत परिणाम होता है। सुनने वालों, पहले पीछे बोलकर फिर बाईं ओर बोले तो कार्य सफल नहीं होता। उस स्वर में आवाज़ करें कि ऊंची आवाज़ में बोले तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों, विश्व संख्या में आवाज़ करें कि और भी ऊंचा बोले तो शुभ होता है। सुनने वालों, आकाश की ओर मुंह करके बोले तो धन की हानि होती है। दोनों ओर आवाज़ करे तो उत्तम शगुन, अच्छा शगुन माना जाता है। सुनने वालों,

खंजन, सुनने वालों खंजन भी एक पक्षी है, यदि यह इन स्थानों पर बैठा दिखाई दे, घुड़साल, फिलखाने, बाघ, महल, लिपि भूमि, दही का बर्तन, छायादार पेड़, फूल पत्ते, फल वाला वृक्ष, तो धन लाभ की आशा, नदी, तालाब, कमल का फूल, गाय की पीठ, पत्ते उपले, दूध वाले पेड़, भवन के मुख्य द्वार, अगर इस जगह पर दिखाई दे तो समस्त वेदियों का नाश, लता, कांटेदार वृक्ष, सूखा वृक्ष, पत्थर, अधजली हड्डी, मदिरा के घड़े, सुने घर में यज्ञ स्तंभ, अपमान और रोग प्राप्त होता है सुनने वालों। नीलकंठ, नीलकंठ तो आप सब जानते हैं कि एक बहुत नीले रंग की गाय है, यदि यह दिखे तो दाई और सदैव फलदाई, सामने दिखे अनेक विधन, नीलकंठ और कौवा दोनों दाई और उड़े और कौवा आगे निकल जाए धन हानि, इसके विपरीत नीलकंठ आगे निकल जाए यात्रा सफल, धन का लाभ होता है सुनने वालों।

हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, श्यामा चिड़िया, आपने श्यामा चिड़िया का नाम तो सुनना हो, सुना ही होगा, क्योंकि रामायण में जब मन का 108 है उसमें भी राम जी कहते हैं श्यामा चिड़िया तू ही बता दे कि सीता जी कहाँ पर है। यदि श्यामा चिड़िया दिखाई दे बाई और बोलती कोयल अच्छे फल, दक्षिण और बोलती अनिष्ट फल, सामने आकर बोले यात्रा स्थगित के संकेत कि यात्रा टाल देनी चाहिए, पीठ पीछे बोलती शुभ सूचना सफलता, प्रसन्न भाव में क्रिया करती हुई सामने कार्य सिद्धि, प्रसन्न मुख इधर उधर फुदके धन लाभ सफलता, दाएं भाग को खुजाती हुई शत्रु नाश मित्र से लाभ, दाएं भाग को फड़फड़ाती हुई विजय, दोनों ही भागों में शुभ समाचार सफलता, चोंच पैरों से बाई आँख खोलती हुई वस्त्र आभूषण लाभ, भोजन की तलाश करती हुई सिद्धि अच्छे भोज्य, भोजन पर झपटती हुई अति शीघ्र सफलता, रमन करती हुई स्त्री से लाभ, सूखो बियाबान से हरे भरे की तरफ आते हुए उत्तम फलदायक उन्नति की सूचना, दासियों में आ मिले प्रिय जन्म मिलन, पैरों से दाहिने नेत्र को खुजाती हुई प्रिय जन्म मिलाप, पूछ जल्दी जल्दी ऊंची नीची करती हुई प्रेमिका मिलन, चोंच से सामने या गुप्त अंगों को स्पर्श करती हुई सुंदर से समागम, पैरों से मुंह खुजलाती इच्छित वस्तु प्राप्त, निर्जन सरोवर में नहाती हुई भू संबंध संपत्ति का लाभ, टेढ़ा मुंह करके देखे या भाग जाए झगड़ा हो, आलस्य भरी या बीट करे धन नाश विपत्ति, मुंह के आहार को नीचे फैलाती हुई सांचे धन की समाप्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हुई एक जगह झगड़ा दूसरे पर सफलता।

सुनने वालों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब बातें स्वप्न विज्ञान से निकाली गई हैं। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो हमारे सूरीनाम के महान गायक देसी रघु सिंह जी की आवाज़ में था।

सुनने वालों, मैं आप सबको सुना रही थी श्यामा चिड़िया के बारे में। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। जोड़े से अलग भागे, स्त्री से कष्ट हानि, पति पत्नी दोनों के बीच में से पहले चिड़िया फिर चिड़िया निकले, निश्चय कार्य में सिद्धि। इसके विपरीत पहले चिड़ा फिर चिड़िया निकले, सिद्धि में संशय। नीचे से उड़कर ऊपर जाए, उत्तम फल। नीचे की तरफ जाए, अवनीत की सूचना। बाईं तरफ बोलती हुई अच्छी, दोनों तरफ बोलती हुई अति उत्तम फल। उड़कर किसी गंदगी पर बैठे, यात्रा टाल देनी चाहिए। किसी पतंगे को पकड़ने दौड़े और एक के बजाय दो पकड़ ले तो दो गुना लाभ की आशा।

पशु शकुन विचार। अब हम पशुओं की ओर चलते हैं सुनने वालों। बिल्ली संबंधी शकुन। यदि यात्रा आरंभ में बिल्ली हमें मिले तो क्या क्या शकुन होते हैं सुनने वालों, और क्या क्या हानि होती है। बिल्ली अगर रास्ता काट ले हानिकारक, बाईं से दाईं और रास्ता काटे निष्ठ फल, मुख में आहार लेकर आए शुभ, मुख में मांस भरे सामने आए सफलता, किंतु बोले भी तो शुभ, खाली मुख बंद करे शुभ नहीं असफलता, परस्पर लड़ती दिखे तो अशुभ, बाईं ओर रहे शुभ कार्य, घर लौटते समय दाईं ओर रहे श्रेष्ठ, सोते समय ऊपर आ पड़े मृत्यु कारक, किसी के पांव सूंघे स्वास्थ्य खराब रोग, माथे को चाटे राजभय पत्नी विरोध, किसी स्त्री के हृदय को चाटे पुत्र को अनिष्टकारक, किसी स्त्री के पांव को चाटे अहितकारक यानी हानि, घर में आकर शीघ्र चली जाए रोग शत्रु का नाश।

सुनने वालों देखो, हमें अगर रास्ते में बिल्ली दिखाई दे, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर हमारा रास्ता काट ले, तो वो सभी जानते हैं कि हानिकारक है, वो अशुभ माना जाता है। अगर बाईं ओर से दाईं ओर हमारा रास्ता काटे तो नेष्ट फल, वो भी थोड़ा सा अच्छा फल है। मुख में आहा लेकर आए, अगर उसके मुंह में कुछ है तो शुभ माना जाता है। सुनने वालों, मुख में मांस भरे सामने आए तो सफलता होती है। सुनने वालों, किंतु बोले भी तो, अगर बिल्ली बोलती है तो शुभ माना जाता है। अगर मुंह में कुछ भी नहीं है, खाली मुख है, खाली मुख शब्द करें तो असफलता होती है। सुनने वालों, अगर बिल्ली लड़ती दिखाई दे तब भी असफलता होती है। सुनने वालों, बाईं ओर आ रही हो तो शुभकारी, तो अच्छा माना जाता है। घर लौटते समय दाईं ओर से दिखाई दे तो श्रेष्ठ, तो भी अच्छा माना जाता है। सुनने वालों, सोते समय ऊपर आ पड़े कि अगर कोई सो रहा है तो किसी ने घर में बिल्ली रखी हुई है तो वो अशुभ माना जाता है। सुनने वालों, वो मृत्यु का कारक होता है, कारण होता है। किसी के पांव सूंघे, अगर बिल्ली किसी के पांव सूंघती है तो स्वास्थ्य खराब और वो रोगी हो जाता है। और माथे को चाटे किसी के तो पत्नी विरोध, तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है। सुनने वालों, किसी स्त्री के हृदय को चाटे तो पुत्र को अनिष्ट कारण, तो पुत्र को हानि पहुंचती है। सुनने वालों, किसी स्त्री के पांव को चाटे तो अहित कारक, तो वो भी अशुभ होता है। सुनने वालों, घर में आकर शीघ्र चली जाए कि घर का चक्कर लगा के फिर बाहर चली जाए तो रोग और शत्रु का नाश हो जाता है। सुनने वालों,

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो सुनने वालों, आपका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो आप हर समय सुनते हो। अब हम एक गाने की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर देर पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नज़र आएगा। सुनने वालों, अगर हम ये थोड़ी सी चीज़ें करके देखें तो कुछ ना कुछ सुधार अवश्य होगा।

जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, जीवन में परेशानियाँ तो सबकी होती हैं, चाहे जितनी भी हो, अगर हम चिंता करेंगे तो वो और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती, और खामोश होने से थोड़ी कम हो जाती हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम भगवान का शुक्र करेंगे कि परेशानी आई है तो भगवान ही दूर करेंगे तो उससे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। सुनने वालों, हमें हर समय परमात्मा का, भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए।

किसी अवसर की प्रतीक्षा में बैठना व्यर्थ है। आज का दिन जो किस्मत से हमें मिला है, यही अवसर है, इसे जाया ना करें। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कठिन रास्तों से कभी घबराना नहीं चाहिए। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन हो या मनुष्य के विचार। एक बार स्तर नीचे आ जाता है तो जोखिम बढ़ जाती है। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। जिसने इस तत्व को धारण कर लिया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। देर मैंने ही लगाई है तुझे पहचानने में मेरे ईश्वर, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सिर झुकाता गया वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया।

नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना इससे अच्छा व्यायाम दिल के लिए कोई और नहीं। सुनने वालों, मैं आप सबसे यही आशा करती हूँ कि जो मैंने आप सबको बातें बताई उसमें से कुछ ना कुछ आपने अवश्य लाभ उठाएंगे। और ये सब मैं स्वप्न विज्ञान से खोज खोज कर लाती हूँ, तो आशा करती हूँ अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट देना। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

तो यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं और ये है फॉर ऑल द लवर्स कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वाह रे दोस्तों, कि तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है और बम्बई का बाबू 96C0 नेगेटिव सेस्ट का मूवी है और कलेक्शन यानी कि क्लासिक सॉन्ग है। और बम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

मैनी भोला है और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके फरियाद कर रही है ये तरस रही हुई है निगाहें फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें और देखे हुए किसी को ज़बाना गुजर गया है देखे हुए किसी को ज़माना गुजर गया है और जो किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जो अगर दिल के अरमान जो है वो जब टूट जाते हैं तो आंसू बनकर आंखें में झलक जाते हैं।

0: और दिल के अरमां आंसुओं में, और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं, हमारे यारो ये सब बात होता है। जब किसी के इंतजार करते हैं वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जब कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम आपको बताते हैं।
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो,
0: सोचो कभी ऐसा हो तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन?
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बन होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एतर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेगे नीदरलैंड के बातचीत होते हैं न सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 15.7 AM फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्लस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते ही नहीं, आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर, और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, और 85 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है दोस्तों, मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी, और चोरी चोरी चोरी में क्या होता है, और दादा दादा नहीं पद्मश्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

और आजा आजा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेगी तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। ये किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और मैं थी मुकेश, नाइटी गिल लता मंगेशकर या जोंग आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में कुमार यानी कि जीनत अमन मनोज कुमार ने काम किए हैं, और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आंख को, मैं भी आंख को कभी नहीं भूलूंगा। जब आंख हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आंख को कैसे भूलेगा। हमारी यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आप की अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रोका है, हमने चांद रोका है एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग हैं, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो, और ये गीत है फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और घोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैतिक लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंड तेंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर। जोकर तो आओ मिल करे सुना जाए।

और जाने कहां गए वो दिन, फिल्म के नाम है मेरा नाम जोकर, नहीं करने वालों से ही पता का ये फिल्म है दोस्तों, माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है।

दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि वे महान हैं, क्योंकि वे ऊंच पद पर है या ऊंच विद्वान है, और इसलिए भी कि वे अमीर हैं। ये सोचने के बहुत सारे कारण हैं मित्रों कि वे बहुत महान हैं। लेकिन आप केवल तभी महान हैं जब आप अपनी खामियां देख सकते हैं। महान तब है जब आप उन्हें सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तब है जब आप दूसरों को उनकी खामियां के साथ स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं। तब आप न केवल महान हैं बल्कि महान भी हैं भगवान की नजर में। क्या आप भी एक अच्छे इंसान हैं? क्या आप में है ये गुण? और यदि आपके पास है तो इसी तरह आगे जीते रहिए, फिर मृत्यु के बाद भी आपको एक महान अच्छे इंसान के रूप में याद किया जाएगा।

दोस्तों, सुखी आत्मा कौन है? मैं कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं। नंबर एक, एक खुश आत्मा दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देती है और इसके बजाय खुद को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरे नंबर, एक खुश आत्मा वो है जो लोगों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। नंबर तीन, सुखी आत्मा वो है जो ये समझे कि हर कोई अपने हित में सही है। चार, एक खुश आत्मा वो है जो जाने देना सीखती है। एक खुश आत्मा वो है जो किसी भी रिश्ते की अपेक्षाओं को त्यागने में सक्षम है और देने की प्रवाह करती है। नंबर छः, एक प्रसन्न आत्मा वो है मित्रों जो ये समझती है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी शांति के लिए करते हैं। मित्रों, अब आपकी बारी है कि इसे लेकर आप क्या करेंगे?

मित्रों, जब समय खत्म हो जाएगा तो वह कभी वापस नहीं आएगा, वो समय फिर वापस कभी नहीं आएगा। अन्य समय आएंगे, लेकिन इच्छित समय दोबारा और किसी के लिए भी नहीं वापस आएगा। इसलिए क्रोध न हो और उन चीजों या लोगों में न फंसे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इसके बजाय आगे बढ़ें और उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं, चीजें जो आपकी जिंदगी बदल देती है। दूसरों के बारे में तनाव लेने से ज्यादा ये आपकी हानि करेगा। मित्रों, कभी भी अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद न होने दें, क्योंकि आप भी हर सेकंद के साथ बूढ़े होते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। क्या आप कृपया इसे ध्यान में रखेंगे मित्रों?

भाई बहनों, जीवन कठिन है क्योंकि हम बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि लक्ष्यों पर। ये वह तरीका है जिससे हम इसे देखते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए सोच विचार कर करना चाहिए। मित्रों, मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता।

जब तक संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं मिट जाता, तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों नहीं मिट सकता।

नम माता पिता चरणम नम विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। और यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

ठीक नहीं है। भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतू कवेंस एंड फेल वर्क प्लसीर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जो हमारे देश में सफर से आए हैं तो उन्हें फन हार्ट वेलकम एंड फाइन वैकेंसी टू गवेंस। ये ऐसा देश है जहां सुंदरता जो देखने के लिए दुनिया से हर एक प्रांत से लोग यहां आते हैं। सिर्फ मशहूर है म्यूजियम से जहां कुंस एंड कल्चर के लिए लोग यहां तक आते हैं, पर यहां देखने के लिए काफी चीजें हैं, काफी जगहें हैं।

यह बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में भी मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार और कौन कौन दिन से और मंदिरों को लगाया जाता है, हालांकि अलग अलग शहरों में, पर फिर भी रोटरडम, डेन हाग, अलमेर, आरनहेम, आम्स्टरडम, फ्लारनेंग, क्रिम्पन आन द एसल, इसी प्रकार से अन्य अन्य स्थानों पे आप गूगल महाराज से संपर्क करें। अगर मंदिर का दर्शन करना है, भगवान को दर्शन करना है, तो आपके लिए हॉलैंड में भी मंदिर लगाया जाता है। देखा जाए कि डेन हाग में खासलान 74 से जो देव मंदिर लगाया जाता है, जो 2 बजे से 5 बजे तक हर रविवार को, डेन हाग में श्री राधे कृष्ण मंदिर जो हर मंगलवार को 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, और इसी तरह से सूतमेर में मंगलवार को 6 बजे से हल्फ नहीं खतक रात्रि का कार्यक्रम, और खास करके अल होखते दाख को मंदिर लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो अलमेर उस तरफ रहते हैं, तो शायद आप कभी नहीं गए होंगे, तो गोल्डन टेंपल यानी कि विष्णु मंदिर जो अलमेर शहर अलमेर बैत में है, वो 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है हर रविवार को। रोटरडम में भी राम मंदिर इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है। सुनो लो, हम पहला भजन की ओर बढ़ेंगे।

जिनके हृदय श्री राम बसे। ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नई खतीन ससन सई फंतक में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

कि अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

का एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में ये रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

कहना जहां मैं गलत हूँ वह राह दिखाओ, लेकिन जहां मैं सही हूँ वहां मेरा साथ निभाओ।

के अंतर्गत कहा जाता है कि अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ति मेहुल के आवास में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कन कन में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. श्रीमान खेमराज जी ने यह संदेश को भेजे। अन स्क्राइबर फिलोसोफ जो धर्म के बारे में भी काफी लिखते पढ़ते हैं।

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महा मंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

कहा जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

ये सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमई जी।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। और अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

स्वस्थ रहे और मस्त रहे। एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।

ग्रेट कॉम्पोजिशन ओमाजी चल मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया नेहती नेहनन सस्तख में धर्मेंद्रा आशा परेख अरुणा ईरानी इसमें अपना कला से प्रदर्शन दिए।

सुनालो, मैं हूं आपका सेवक संजय। कुछ समय तक मैं आपके साथ व्यतीत रहेंगे। कुछ पुराने गाने और कुछ नए गाने के साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जो दुनिया के हर एक प्रांत में इंटरनेट द्वारा आप सुन सकते हैं। हमारी हिंदुस्तानी की आवाज़।

कहते भी है कि जिसका उदयी होना निश्रित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है।

कि कोई आपकी वजह से, कोई आपकी वजह से मुस्कुराए, ऐसा दिन जिंदगी में रोज आए।

किनारा ही के खोज में हम सभी लगे हुए हैं, पर किनारा कैसे हम पहुंचेंगे? पहले तो हम नाव में दोनों पांव अपने रखे, क्योंकि हम सभी भगवान को पाना चाहते हो, पर पकड़े हुए अभिमान से लाचार है। और ये भी संदेश प्रदीप जी ने भेजे हैं उत्तम नगर से। प्रदीप जी के ये संदेश है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है।

एक और संदेश को और भेजे हैं, जिसमें लिखा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। जैसे कहा गया है कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। हकीकत यह है कि मन को प्रसन्न रखने सब दुख दूर हो जाएगा।

आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने, जिस पर सुनील जी भी ये संदेश भी हमारे लिए भेज दिया कि मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, मुस्कुराने के वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी, कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी।

सुनालो इस पर ईश्वर जी भी हमारे लिए एक संदेश भेजा। और भाई ईश्वर आपके संदेश कोशिश करेंगे रखने के लिए। संदेश जो ऐसा है कि सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीजें मुस्कुराते हुए छोड़ देना चाहिए। ये संदेश जो ईश्वर जी हमारे लिए भेजे।

और सुनने वालों, भाई ईश्वर जी का दूसरा संदेश ये है सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

बिल्कुल सच कहे भाई ईश्वर ने। संदेश जो कि सत्य की भूख सबको है, हम सभी सच्चाई सुनने को इच्छा करते हैं। और भाई ईश्वर कहते हैं कि सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।

कि जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाता है।

सुनने वालों, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बहुत जरूरी है कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी रखे, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है।

सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और संदेश जो ईश्वर जी के ओर से जो भारत मोहन गार्डन से जुड़े हुए और हमारे पास संदेश को भेजते रहते हैं, तो ईश्वर जी के ओर से एक और संदेश है, वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते हैं, बस सही साबित होने में वक्त लग जाते हैं।

अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे इंसान अच्छे समय ला सकता है, लेकिन अच्छे सामान अच्छे इंसान नहीं ला सकता है।

दोस्तों, ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है। और ये भी आप जानते हैं कि बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है, बुद्धिमान वो नहीं होता है जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है।

रब ने बना दी जोड़ी। रूप कुमार के आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। कहा जाता है कि नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।

वाह, क्या सुंदर संदेश। कहते हैं कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे। क्या खूब संदेश भेजा भाई ईश्वर ने कि नमक जैसे हो गई है जिंदगी, अपने ही लोग हमें स्वाद अनुसार इस्तेमाल करने लगे हैं।

कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों के गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासला होने लगता है।

फिल्म कबीर सिंह, ये गीत जो गाए हैं अरिजीत सिंह, उनके आवाज़ में ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने।

गीत में कुछ संदेश भी था। ज्यादा लगाव रखना है तो अपना करियर से रखे, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है मगर अपना करियर जो है ना आपका हमेशा साथ देता है। सुनने वालों, यहां तक हमारे हिस्से के कार्यक्रम। आशा रखता हूं कि कुछ न कुछ नए गीत और कुछ पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम को बनाया गया। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार। मैं आपका सेवक संजय और आपसे विदा लेते हैं, और किसी ने अच्छे कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

सावन ही सारी बड़ा चून है और यहाँ सारे में होता है क्या हो तेरे और दर भरे गिर भी रुकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम प्यार करे मुझसे प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से खुदा करे जिसे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से

जीवन जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। जीवन एक संगीत है, इसको गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे हो, हालात चाहे जैसे हो, मुस्कुराते ही रहिए।

क्या हुआ तेरे वाला दरबार गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग के प्रोग्राम में अब की बार तू प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता किसी और है।

चलो तुम छोड़ दो मुझको, चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस जाता हूँ। चलो तुम छोड़ दो मुझको, मैं वापस लौट जाता हूँ, पर तुमको रास्ता बताता हूँ कि अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अभी वफा के रास्ते से आया हूँ, अब किसी के लिए पराया हूँ। शायद शायद मेरे सखम सिल जाए, शायद मेरे सखम सिल जाए, तुमको नया साथी मिल जाए।

क्या हुआ तेरा और दर्द भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फाहन हिंसा पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, जैसे खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 8 2 8 4 से आपको तार करना है।

औरों का सफर के प्रोग्राम में आज कृष्णा कुमार कुन्नति यानी मशहूर गायक स्वर्गीय काका के बारे में बातचीत होगा। कृष्ण कुमार कुन्नत मिस्टर के पैदा हुआ दीरेंद्र तक ऑक्सीस तक इंडिया का प्लेबैक सिंगर न सिर्फ हिंदी लेकिन तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम मराठी बंगाल और गुजराती गाना पेश किया। इंडिया से पॉप रॉक म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक भी पेश किया। एक बेटा जिसका नाम कृष्णा और बेटी जिसका नाम है तमारा। मलेशी से ओल्डर्स माता पिता मलेशिया से थे और दिल्ली में बड़ा हुआ न्यू दिल्ली में बड़ा हुआ। लगभग 3500 गाना की ने गाया। जॉस ऑफ इंडिया जब क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रहा था नीघ तक में तो इंडिया का क्रिकेट टीम के लिए भी एक गीत पेश किया। बेटा कृष्णा ने गाया एक मस्ती गाना एक मस्ती एल्बम बनाया और बेटी तमारा ने पियानो पेश किया। किकी किशोर कुमार और एस डी बर्मन को गुरु की तरह जानता थे। किकी कहते थे कि एक गायक का चेहरा मत देखना उसके चेहरे पर मत आना उसके आवाज़ पर आना। सही बात है दोस्तों।

वैसे क्योंकि म्यूजिक ऑपलेने कभी नहीं किया, सिर्फ स्टूडियो किया, यानी फेरिस्तैद दिल्ली का स्टूडियो में, यानी फेरिस्तैद में स्टूडियो के बाद वो मार्केटिंग मैनेजर का काम किया होटल इंडस्ट्रीज में, नहीं फिर नहीं तक में मुंबई चला आया। उसी साल म्यूजिक टेप लुइस बांग को पेश किया और एक दो रोज के बाद यूटीफी ने उन्हें तार किया और एक जिंगल पेश किया अथफतैंसी के लिए। चार साल के अंदर में 30,500 जिंगल्स कीकी ने बनाया। लेस्ट लिवर्स को अपन मेंटर की तरह जानते थे और आर बर्मन ने उन्हें बॉलीवुड में लाया। नीहरी नीहे नीहे टक में कीकी फिल्म हम दिल दे चुके सनम में गीत तरफ तरफ पेश किया। और वैसे तो फिल्म मिथुन का एक फिल्म था जिसमें कीकी ने भी एक गीत पेश किया, बीते लम्हे। हम सब मिलकर सुनेंगे कीकी की आवाज़ में बीते लम्हे।

रिकॉर्डिंग सेशन निघंटक में सोनी म्यूजिक इंडिया का शुरुआत किया गया और किकी को सेलेक्टेड किया गया इसी म्यूजिक इंडिया में। किकी ने बनाया सोलो एल्बम पल, जिसमें गाने थे जैसे आपकी दुआ, यारो और पल। किकी को स्क्रीन अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड मिलने के बाद 8 साल किकी ने गीत नहीं गाया, म्यूजिक वर्ल्ड में भाग नहीं लिया। 8 साल के बाद 2008 में एक एल्बम पेश किया, एल्बम हमसफर। वैसे तो किकी ने एंगल्स, रॉक, बालाद वगैरह वगैरह अपन जिंदगी में गाया दोस्तों। वैसे किकी भी टीवी सीरीज के लिए बहुत से गीत पेश किया और स्टार परिवार में भी गीत पेश किया। उन्हें 2003 में अवार्ड मिला श्रिया घोषाल के साथ। किकी ने टीवी पे जैसे मैंने कहा बहुत से गीत गाया, वैसे पाकिस्तान का टीवी पे भी शो पेश किया और एक मशहूर गाना था पाकिस्तान टीवी पर, तनहा चला। वैसे सबरी ब्रदर्स के साथ भी कव्वाली पेश किया, चलता सूरज। बहुत से इंडिया से बाहर बहुत से कॉन्सर्ट भी दिया। वैसे किकी 2015 में टीवी रियलिटी इंडियन आइडल्स में भी भाग लिया। 13 सितंबर 2015 में सोनी मिक्स बातों बातों में किकी ने तमिल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड उन्हें मिला, कनाडा प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, मलयालम फिल्म अवार्ड का उन्हें मिला, हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड 2003, 2006, 2008 और 2009 में किकी को मिला, सी साइन अवार्ड 2004 में, आईफा अवार्ड 2004, 2006, 2007, 2008 और 2009 में किकी को मिला। दुख के बात यह है दोस्तों कि एक कॉन्सर्ट कलकत्ता में एक कॉन्सर्ट देने के बाद वो वापस घर आते थे और वही कलकत्ता में एक सीढ़ी पर से गिर पड़ा और तुरंत 23 साल के उम्र में इन दर तक मई 2002 के बात है जब किकी का मृत्यु हो गया। किकी दुनिया में नहीं लेकिन किकी के नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा।

पहाड़ों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है। प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

टिक टिक मेरा दिल बोले जीतू जितेंद्र का समय रहा उन दिनों में दोस्तों, फिल्म हम जोली का सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। वैसे जितेंद्र का पिता इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोना चांदी आप जाने नकली सोना चांदी का गहने बनाते थे। तो जीतू ने एक बार स्टूडियो में गया है गहना देने को, तो फिल्म डायरेक्टर ने जीतू को देखा, उससे बातचीत किया और कहा क्यों ना आप मेरे फिल्म में काम करने के चले आए। तो जीतू ने सोचा घर पर जाकर और पिता के साथ वो फिल्म मैनेजर के साथ पास गया और तुरंत उन्हें फिल्म गीत गाया पत्थरों में एक रोल मिला। उसके बाद टॉप एक्टर था अपने समय पे, यार फैफन शेस्तक तो निगरी सीफन तक जबले खन्ना ने ही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। तो जितेंद्र एक टॉप एक्टर था। अब की बार राजेंद्र कुमार जो जुबली कैसे लोग कहते हैं जो जुबली अवार्ड विनर या जुबली कुमार के नाम से भी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। सहरा बानू के साथ फिल्म अमन में काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग राफी साहेब की आवाज़ में।

सरद जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जय किशन के म्यूजिक पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप चुन है

एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। पावन इंसानी पर आप चुन है, आप सुनेंगे दिल के बाद पियानो के साथ। के बाद पियानो के साथ चलेगा सिमी, फिल्म साथी का बात है। सिमी पियानो के पीछे बैठ गया है दोस्तों, और बगल में खड़ा हुआ है राजेंद्र कुमार और सामने विजयंती माला। और सिमी क्या फरमाएंगे अपन दिल का बात, आप खुद सिमी का दिल के बात सुनते रहना।

की बार अपन दिल के बात पियानो के पीछे बैठ कर सुनाएगा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कहेगा, ऐ हुस्न जरा जाग, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए।

सो रही है, साधना जी सो रही है, जब ये म्यूजिक सुना, ये पियानो का आवाज़ उसके गले में उसका कान में गया और राजेंद्र कुमार का आवाज़, तो वो जाग गया और आहिस्ता आहिस्ता आकर राजेंद्र कुमार के सामने खड़ा हो गया।

गाएंगे अब की बार मनोज कुमार। मनोज कुमार पियानो बजा रहा है और सामने खड़ा हुआ है वहीदा रहमान और मुमताज़। मुमताज़ का चेहरे पे तो खुशी है, लेकिन वहीदा रहमान का चेहरा तनी मायूस मालूम होता है। पता नहीं क्या हुआ, आप हो सकता है अगर आप ये गीत सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा हुआ या क्या हुआ है उस वक्त वहाँ पर दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ आप सुन रहे हैं और आपको मालूम है दोस्तों फिल्म संगम। इस फिल्म में एक फूलता दो काते यानी कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर और फूलता प्यारी सी फूलता वैजयंती माला। तो दोस्तों में जब प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत का बात रहता है। राज कपूर साहेब, राज कपूर जी पियानो के पीछे बैठा हुआ है और राज कपूर के पीछे बैठा हुआ बैठी हुए है वैजयंती माला और उसके सामने राजेंद्र कुमार राज कपूर जी क्या फरमाते हैं। मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन ये फिल्म में राज कपूर ने प्लेबैक किया। राज कपूर के ये सॉन्ग है दोस्त दोस्त ना रहा, अपन प्यारी जिगरी दोस्त के लिए फरमाते हैं, सुनिए।

उस दोस्त नारहा के बाद आप जानते दोस्तों दिल में दर्द छा जाता है भी, न सिर्फ प्यार मोहब्बत में, लेकिन जब एक पिता बचपन में माता को और छोड़ के चला जाता है तो आप जानते हैं किस तरह से एक माँ अपन बालक को पोसते रहते हैं। लेकिन बात यह हुआ है कि देव मुखर्जी पिता प्रदीप कुमार को पहचान लिया है और प्रदीप कुमार अभी देव मुखर्जी को नहीं पहचाना कि वो उसका बेटा है। तो देव मुखर्जी पियानो के पीछे बैठे हुए हैं और सामने पिताजी खड़ा है, मुंह में एक सिगार लगाकर सुन रहे हैं ये गीत।

के बाद पियानो के साथ में अब की बार दोस्तों निकली आतंक शस्त्र की बात है। जब फिल्म ब्रह्मचारी पेश हुआ, शामी कपूर का प्यार था रायश्री से, लेकिन रायश्री ने शामी से प्यार किया और सगाई की प्राण के साथ। तो पियानो के पीछे बैठा हुआ है शामी और सामने बैठी हुई है प्राण और रायश्री, और शामी कपूर क्या फरमाते हैं सुनिए।

के बाद पियानो के साथ आप सुने, एक आखिरी दिल के बाद पियानो के साथ आप सुनेंगे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पियानो के पीछे बैठा हुआ है दोस्तों, और सामने बैठी हुई है, उदासी छाई हुए है चेहरे पर, बैठी हुई है वहीदा रहमान। और कुछ देर बाद आ जाते हैं, दिलीप के बगल में खड़ा हो जाता है मनोज कुमार। तो ये दोनों क्या फरमाते हैं मिलके, आप सुनिए दिल के बाद पियानो के साथ।

के बाद पियानो के साथ अभी आप सुन रहे थे दोस्तों फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। हमेशा आप फाहन हिंदुस्तानी सुनते रहना और हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से न्यूज सीफ तक फिर सीफ पर आपको तार करना है। ओ माजिरे आशा जी के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, फिल्म बंदे हार्ट का सॉन्ग है दोस्तों। ये फिल्म जिसमें मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ओ माजी रे

फिल्म बंदे हाट का सॉन्ग मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इस फिल्म में मुमताज अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बात क्या हुआ है कि निखिल सीफन तक पे जब ये फिल्म बन रहा था, फिल्म के शूटिंग के समय, तो मुमताज अपन मर्सिडीज बेंज से आते थे और अमिताभ बच्चन वही कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, एक छोटा सा मोटर कार से आते थे। तो हमेशा जब मुमताज आ जाते थे तो अमिताभ बच्चन वहाँ दरवाजा के सामने खड़ा होकर इसका कार को तारीफ करते थे। शूटिंग के समय भी कार के बात मर्सिडीज बेंज के बातचीत करते थे। तो मुमताज ने सोचा ये आदमी को मेरा मर्सिडीज बेंज बहुत पसंद है। तो मुमताज क्या कहा दोस्तों, एक रोज ये शूटिंग के बाद मुमताज निकल के चला गया और अमिताभ बच्चन के मोटर कार लेकर चला गया और अपन मर्सिडीज बेंज वहाँ छोड़ दिया। आमने सामने एक दो लोग जो था उनसे कहा कि कह देना अमिताभ साहब से कि तोहफा के रूप में ये बेंज वो रख सकता है। तो अमिताभ बच्चन जब शूटिंग के बाद बाहर आया और देखा उसका मोटर कार नहीं है, वहाँ बेंज खड़ा हुआ है। तो लोग गया उससे कहा कि आपका कार जो है, तो अब मुमताज उन्हें लेकर चला गया है। तो अमिताभ बच्चन के से बताया भी कि तोहफा के रूप में आप इन्हें रख सकता है। अमिताभ बच्चन बहुत खुशी हुआ और बहुत तारीफ किया मुमताज जी को। और आप जानते हैं दोस्तों, मुमताज अमिताभ बच्चन ये दोनों लगभग 5 या 6 फिल्म बनाए। मुमताज उन दिनों में एक पुराना एक्ट्रेस था, कई फिल्म खेल चुका था, लेकिन अमिताभ बच्चन वही जैसे मैंने कहा कदम रखा था फिल्मी दुनिया में। और अमिताभ बच्चन के उतना पैसा भी नहीं था उन दिनों में एक नया कार किने, तो एक पुराना सा कार लेकर स्टूडियो में आते थे। तो ये था अमिताभ बच्चन और मुमताज का कहानी फिल्म बंदे हाट का।

ओ माजी रे आशा जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, देवानंद का फिल्म गाइड का सॉन्ग किशोर दा के आवाज में और साथ ही साथ लता

गाता रहे मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन फाहों ने सारे पर आप चुन है।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురుమే దేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ మిల్ పా రహా హై అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠా క్యో हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और जो आज दूर दूर दूसरों देशों से भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हार्दिक से नमन करते हुए बस ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर हम सब आज फिर एक बार और स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं। उपस्थित है शांता जी भी और वो पहले कुछ कहे फिर उसके बाद में राजेंद्र जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए हैं उसके पास हम बढ़ेंगे फिर आगे के कार्यक्रम बढ़ेगा।
1: ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। रेडियो फाउन हिंदुस्तानी के सभी कार्यकर्ता और ज्योति के प्रकाश सुनने वाले सभी श्रोतागणों को हर बार की भांति इस बार भी हम कुछ नया खोज के लाए हैं। इस बार कुछ कृष्ण के बारे में, विरह के बारे में है और कुछ जनेऊ और क्या है चरणामृत, चरणामृत के बारे में, चरणामृत के विषय में क्या है ये सब लाए हैं। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं ढूंढने वाले उनको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जो इस प्रकार का विषय हमको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको और सबको जो कि इस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम देखते हैं सुनते हैं। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
0: जरूर राजेंद्र जी, शांता जी का एंट्री बढ़िया से नहीं हो पाया आज, ये कैसे हो सकता है? शांता जी आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आपका माइक मेरे ख्याल से ऑन नहीं था और एक बार से फिर आप
2: तो अच्छा यहाँ से मैं तो परिचय देती हूँ, दोबारा अपना परिचय देती हूँ कि एक तरफ सामने कृष्ण दूसरी तरफ राधिका गोरी जैसे एक दूसरे में मिल गए हो चांद चकोरी। तो यहाँ से सुनने वालों आप जैसे सुने हैं तो सेविका शांता जी यहाँ पे ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम के लिए साथियों के साथ यहाँ उपस्थित है। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है।
0: और राजेंद्र जी जैसे कि हमें भी पता है कि हमारे सुनने वालों जो हर सप्ताह की तरह हम सब कार्यक्रम में रखते हैं कि जिसका मन उदास बैठे हुए, क्योंकि एक दीदी जी जो एंथोफा शहर से भी सुन रहे हैं तो मन जब उदास है तो उदासी मन के लिए हम सब वो गीत रखते हैं फिर कार्यक्रम उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होते रहते हैं।
1: जरूर क्यों ना उन लोगों का मन भी उदास से दूर किया जाए,
0: चला देते हैं
1: उदासी से।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। राजेंद्र जी, आज का जो हमारा विषय है कि चरण अमृत, चरण अमृत क्या है और उसके बारे में काफ़ी जानकारी हम सब लेकर यहाँ हमारे विशेषज्ञ जो हम सब के लिए खोज खोज करके रखे हुए हैं, तो हम अभी सुनाने वाले हैं। और ये कार्यक्रम में काफ़ी जानकारी है चरण अमृत के बारे में, पर राजेंद्र जी आज के जो विषय है उसमें उद्धव, उद्धव जो कृष्ण भगवान के मित्र थे, और ऐसा क्यों कि कृष्ण भगवान मनुष्य के शरीर धारण किए, और यानी कि कैसे, उसके बारे में कुछ जानकारी हम सबको आज सुनाने वाले हैं आप। फिर उसके बाद हम सब चरण अमृत जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे।
1: आपने कहा चरणामृत और उद्धव ना?
0: उद्धव जो कृष्ण भगवान जी का मित्र थे।
1: हाँ, जब आपने ये नाम ली उद्धव तो मुझे याद हो गए कि हमारे बुजुर्गों जी ने पहले कहा थे कि ना उद्धव के लेना ना माधव के देना।
0: ना उद्धव को लेना ना माधव को लेना,
1: मतलब इसका क्या था?
0: अब आप ही सुना दो।
1: मेरे ख्याल से ये है कि ना कोई से उधार लेना और कोई से कर्जा नहीं लेना ताकि आपको कुछ देना ना पड़े। हमने ऐसे यही सुनती थी उस
0: पहले पुरखों की बात, आजा दादा दादी
1: ये सब ऐसे हम लोग के ज्ञान देता था। तो ऐसे और आपने कहा चरणामृत,
0: चरणामृत अभी ये गलत फैमिली में ना रहे कि पंचामृत।
1: जी हाँ, वही
0: चरणामृत, यानी कि चरण का धुया हुआ और अमृत जैसे बनता है, तो अभी उसके बारे में हम सब छलांग लगाने वाले हैं।
1: दो है का,
0: दो प्रकार के।
1: हाँ, अच्छा,
0: हम सब अभी उस ओर बढ़ेंगे। पर राजेंद्र जी के हाथ में सारा बैग दौड़ है, और राजेंद्र जी पहले हम सब के कुछ और सुनाने वाले हैं।
2: हाँ, उद्धव जी के बारे में जैसे कि सब लोगों ने सुना भी होगा, और कृष्ण के मित्र में से एक अच्छे मित्र उद्धव थे। तो उद्धव सोचते थे कि मैं इतना अच्छा मित्र हूँ भगवान कृष्ण का कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ
1: जी।
2: तो उनको ये नहीं पता था कि गोपी जो हैं वो ज़्यादा प्रेम करती है प्रभु भगवान को, भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रेम गोपियाँ करती थी, लेकिन उद्धव को थोड़ा कन्फ्यूजन था कि वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उद्धव तो भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका में थे ही, तो उन्होंने बोला कि उद्धव एक काम करो, जाओ एक बार वृंदावन हो के आओ, देखो वहाँ का क्या हालचाल है, क्योंकि जब से मैं इधर आया उधर गया नहीं, तो थोड़ा वहाँ की खबर लेके आओ। तो उद्धव को कृष्ण भेजते हैं द्वारिका से वृंदावन, और जब उद्धव वृंदावन पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे उनका प्रेम, गोपियों का प्रेम जो है भगवान कृष्ण से, तो वो सब वो अपना ज्ञान भूल जाते हैं उस प्रेम के आगे। वो फिर कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वंदगी तेरी बस में नहीं है। गोपियाँ कहती है बात प्रेम की है तो क्या जाने उद्धव, तो अपना ज्ञान नहीं जाने, प्रेम क्या होता है वो तुम्हें क्या पता। इसमें बहुत सुंदर ही एक गीत भी है उसके, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और वो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति गोपियों का वो बहुत ही आगे था, ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान फीका पड़ गया। और आए थे उद्धव उनको समझाने, लेकिन वो वहाँ झुक गए और समझ नहीं पाए, और बहुत दिनों तक वहाँ रहे, और फिर माना उन्होंने कि हाँ प्रेम ज्ञान से ज़्यादा है, क्या ज़्यादा पलड़ा प्रेम का भारी है। फिर जब वो वापस गए वहाँ से, तो फिर कृष्ण भगवान को बोले कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं थोड़ा अपना ज्ञान पे घमंड हो गया था, और अब पता चला कि हाँ प्रेम ज़्यादा, प्रेम का पलड़ा ज़्यादा भारी है और ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से उद्धव के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने बताया। आज का जो विषय है उसकी ओर बढ़ते हैं विषय के आगे की तरफ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, ये भी बिरहा गीत है, गोपी गाती है, और बिरहा गीत सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा बिरहा गीत है। वो कहती है कि इंदिरा शाश्वती दक्षित दृक्षम दृश्यता स्वकति, हे श्याम सुंदर आपके जन्म के कारण संभवता महिम महिम ब्रजधाम पूर्वाक्षेप की सर्वापेक्षा अधिकाधिक उत्कर्षित को हो रहा है। वो यही कहती हैं कि जो ये धाम है वृंदावन धाम, ब्रजधाम, ब्रज धाम, एक ब्रज कोष की 84 कोष का एक धाम है, उसको बोलते हैं ब्रज धाम। गोपी यही कह रही है कृष्ण को कि आपकी वजह से इस जगह का इतना मान बड़ा है और वैकुंठवासी भगवती इंदिरा भी आपकी सेवा में उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में सतत आश्रय कर रही है। और जो वैकुंठवासी इंदिरा है वो भी आपकी प्रतीक्षा करी, आपकी सेवा करी इस जगह पे, तो ये धाम इतना, इसकी इतनी मान्यता हुई है। इसके बाद वो फिर कहती हैं, ब्रज बनिताएं आपके प्रयोग जन्य संताप से संतप तो अत्यंत क्षीण हो, स्थता भटकती हुई भी आपकी निमित्त ही प्राण धारण की हुई ही दैत अभिभूत होकर हमें देखो। वो कह रहे हैं कि आप हमें देखो, केवल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमको देखो, बस उसी में हम लोगों की सब कुछ उसी में आ जाता है। जैसे उक्ति से गीत प्रारंभ होता है कि जयति तीधिकम जन्मना ब्रज सुरुति नास्ति काम श्री हरि प्रभु। जयति शब्द दोबारा इसलिए आया यहाँ पे कि अभिष्ट प्राप्ति एवं विघ्न निवृत्ति है तो मंगलाचरण करती है, जयति भगवान के लिए कहते हैं मंगलाचरण के लिए। इसके बाद अधिक शब्द संक्षेप में अर्थ दयोत तक कहे, यानी कि उसके बाद है, और फिर इसी का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के कारण ब्रजधाम अर्थात ब्रजधाम जो 84 कोट का है, वैकुंठ धाम के अधिक उत्कर्ष हो रहा है। जो ब्रजधाम है वैकुंठ, यानी कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, वो धाम से ब्रजधाम ज़्यादा उत्कृष्ट, ज़्यादा अच्छा इसलिए हो रहा है कि कृष्ण वहाँ स्वयं आए और वो उस जगह पे रहे और उन्होंने ग्वाल बाले, ब्रज के माखन चुराना, गाय चराना, बंसरी बजाना, जंगल में गाय चराने के लिए चले जाना, और बहुत सारे दैत्यों का भी, कंस मामा जैसे, उन लोगों का संहार भी किया, उद्धार भी किया, तो इसलिए वहाँ सब सुख सुविधा और गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो वो धाम भगवान कृष्ण स्वयं रहे। आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, उस जगह पर परिक्रमा करते हैं और वहाँ के जो धूल है अपने माथे पे लगाते, चरण धूली बोलते हैं उसको, कि या इस कैसी ये जगह है जहाँ कृष्ण भगवान रहे। आज भी आते हैं, उसको कहते हैं कि निधि वन में, संजय जी आपको पता होगा वहाँ निधि वन में आप गए होंगे।
0: नहीं मैं नहीं गया, पर मेरा एक मित्र है।
2: हाँ
0: मेरा एक मित्र है, वो हर साल जाता है, वो पूरा ब्रिज भूमि का एक मेरे ख्याल से गोवर्धन पहाड़ का और पूरा परिक्रमा लगा के आते हैं।
2: परिक्रमा लगाते हैं लोग।
0: वो कितने किलोमीटर का है राजेंद्र जी?
2: एक छोटी परिक्रमा है और एक बड़ी परिक्रमा वहाँ।
0: क्योंकि वे मेरा मित्र कहते हैं वो लग जाता है, उन्हें बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि कितना किलोमीटर के है वो?
2: 16 किलोमीटर के।
0: 16 किलोमीटर का
2: बड़ा वाला।
0: तो ये
2: छोटी केवल पर्वत की एक थोड़ा घूम के आती है।
0: हाँ तो
2: कुछ लोग तो परिक्रमा जो दूध की धार के साथ करते हैं, रिक्शा में दूध रख देते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, कुछ लोग पैदल चलते प्रणाम होके परिक्रमा लगाते हैं, और अलग अलग प्रकार की परिक्रमा लगती है वहाँ पे। परिक्रमा हर महीने करने जाते हैं और कुछ साल भर में एक बार जाते हैं, लेकिन परिक्रमा जरूर करते हैं,
0: क्योंकि
2: वो स्थान उसी स्थान से भगवान कृष्ण भी जाया करते थे
0: इसी प्रकार।
2: तो इस प्रकार गोपियों का जो गीत है उसको ऊंचे से नीचे उतारना, लोक धाम में अथवा संस्कृत स्वरूप परमानंद सिदा सिंधु में विराजमान स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु श्रीमद नारायण जीवानुग्रहण संसार में अवतरित होते हैं। जैसे लीला है तो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु का अवतार होता है, वैसे ही वैकुंठ धाम का भी अवतरण होता है। उपासना के अंतर्गत नाम रूप लीला एवं धाम चारों ही विशिष्ट महत्व रखते हैं। जैसे कोई राजाधिराज सहसाम चक्रवर्ती सम्राट, राजाधिराज सहसा चक्रवर्ती सम्राट मतलब समझे आप?
0: ना बोले तो
2: राजा मतलब जैसे चक्रवर्ती सम्राट मतलब जैसे कोई एक बड़ा राजा है और उस देश में छोटे छोटे राजा है, अलग अलग राज्य है।
0: तनी सरनामी में
2: हाँ, जैसे सम्राट उसको बोलते हैं जो सब राजा उसको मानेगा, बड़का राजा है,
0: राजा को
2: राजा का भी राजा,
0: जैसे कि वो बोले है राजाओं में
2: श्रेष्ठ। हाँ तो जो राजाओं में श्रेष्ठ रहे उसको सम्राट बोले,
0: सम्राट
2: वो जो अपने अपने राज्य में राजा करे उसको राजा बोलते।
0: अच्छा
2: तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई राजाधिराज सहसाम चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र बंदियों के कल्याण यदा कदा कारागार में भी अवतीर्ण होते हैं, कारागार में भी कोई सम्राट अवतरित हो जाते हैं।
0: कारागार बोलते हैं जेलखाना,
2: जेलखाना भगवान कृष्ण का जन्म ही जेलखाना में हुआ।
0: कृष्ण जन्माष्टमी को
2: नहीं तो एक बार एक ने पूछा भगवान कृष्ण से, एक बार इसने कहा कि मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, मेरा तो ये काम खराब हो गया, वो खराब हो गया, मेरे ऐसा कर दिया उसे। तो कृष्ण भगवान ने उसको बोला तो तेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा देखना है, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ है। उसके बाद मेरा मामा वो मेरे पीछे पड़ गया मारने के लिए, फिर बहुत सारे लोग वो मेरे को तो कोई जन्म से ही मेरे को सब मारने के पीछे पड़े थे और फिर भी मैं आज ठीक हूँ। तो तेरा दुख तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने बोला कि हाँ ये तो बात ठीक है। तो फिर उसने अपने सोचा कि हाँ मेरा दुख तो कम है। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो कुछ ही ज़्यादा दुखी वाले के पास जाना चाहिए और वो देखो कि कितना सुखी है, तो दुख अपने आप कम हो जाते हैं। इससे ये सीख मिलती है।
0: सही बात।
2: क्यों ना एक सुंदर सा नगमाल
0: चला देते हैं
2: शांता
0: का पिटारा सा निकाला हुआ।

0: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बढ़ते हैं आगे की ओर प्रोग्राम में। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। मानव शरीर ही वज्र है।
1: राजेंद्र जी, ब्रिज ब्रिज और वज्र में अंतर है ना?
0: हाँ, ब्रिज मतलब है जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो गई, द्वारिका हो गई और गोकुल और वहाँ सारे पांच गांव जो है वो ब्रिज धाम है।
1: हाँ जी।
0: और वज्र जो है जो इंद्र के पास हथियार है, दधीचि ऋषि का बनाया हुआ,
1: दधीचि
0: ऋषि की हड्डियों का, और इंद्र के पास उसी वज्र से वो वार करते हैं और वो उनका हथियार है। तो वज्र वो है, वो बहुत मजबूत है। और जो ब्रिज है वो ब्रिज कृष्ण भगवान की जन्मभूमि ब्रिज बोलते हैं।
1: राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: ऐसा हुआ, एक बार मैं सूरीनाम देश में एक इवेंट में थे, अनूप जलोता का शो हो रहा था, तो वो ये गीत कुछ था कि ब्रिज भूमि के, पर उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में गया था और किसी के घर पे ठहरे हुए थे, तो जो ब्रिज भूमि वाला गीत सुन सुनकर तो बच्चों को ये लगा कि फ्रिज ब्रिज भूमि का फ्रिज समझ गया। ऐसा हुआ तो ये बात सुनकर के मुझे भी आज ख्याल आया कि हाँ, ये जो ब्रिज भूमि है, ब्रिज जो भूमि कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, फ्रिज किसको कहते हैं?
0: फ्रिज तो जो
1: जिसमें
0: कुलकास,
1: हाँ कुलकास कहते हैं, और
0: ब्रिज
1: नहीं, जो तगड़ा शरीर क्या कहते हैं, वज्र, वज्र कहते हैं, यानी कि तगड़ा शरीर का ना
2: पहलवान
1: को ना। शांता जी,
2: तो
1: दारा सिंह,
2: हाँ
1: जी। तो राजेंद्र जी, आगे का कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले आप?
0: हाँ, आगे का कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। यदि इस शरीर ब्रिज में प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। ब्रिज शब्द का अर्थ है वज्रति भगवत समीपम सा ब्रज ते जन्मना ब्रजा अधिक जयति। यानी भगवान के समीप ले जाने में जो सहायक होता है वैसा यह शरीर भी वज्र ही है। मतलब
1: तो थोड़ा मुश्किल हो गया राजेंद्र जी, थोड़ा
0: नहीं,
1: समझ
0: मतलब
1: समझ के समझना
0: है। जैसे वज्र होता है
1: वापन, हाँ, हाँ।
0: इंद्र के पास जो वज्र है वापन
1: जी,
0: वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकत है, ताकतवर है, जैसे मिसाइल है बहुत तकड़ी है और
1: हाँ,
0: बंदूक हल्की है,
1: हाँ, हाँ।
0: तो वैसे जो वज्र है तो वो ये शरीर भी कह रहे हैं कि वज्र के समान ही है। अगर भगवान समीप ले जाने में सहायक है, तो अगर भगवान के समीप मतलब भगवान के नज़दीक अगर ये शरीर चले गया तो ये भी वज्र के समान ही उतना मजबूती उतनी ताकत इसमें भी है। ऐसा हाँ, इस शरीर की शोभा वस्त्र भूषणों से नहीं बल्कि भगवत भक्ति से बढ़ती है। ये शरीर की जो शोभा है, लोग चाहे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, शीशा पे देखेंगे, फिर लिपस्टिक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, उससे इस शरीर की शोभा नहीं बढ़ने वाली। वो तो अभी लगाया और थोड़ी देर में उतारा, खत्म होएगा वही। लेकिन अगर इस शरीर को भगवान के सामने ले जाए तो इसकी शोभा बढ़ जाएगी, सदैव के लिए बढ़ जाएगी। तो नाथ, आपके ही कारण मेरे ब्रज शरीर की शोभा बढ़ी है, और आपका प्रकट्य होने के पर ही हमारी शोभा बढ़ पाएगी। कहते हैं कि आपके कारण ही इस शरीर की शोभा भी बढ़ी है, और अगर आपका प्रकट्य मतलब आप अगर दिख जाए सामने तो इस शरीर की शोभा वैसे ही बढ़ जाएगी। शरीर सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मत्सर से मुक्त होगा। ये शरीर का जो सिंहासन है, शरीर सिंहासन है, लेकिन ये जब काम से क्रोध से, काम यानी काम जाने ला
1: ना,
0: काम क्रोध,
1: क्रोध जाने ला,
0: काम न जाने, काम क्रोध लोभ, लोभ जाने लालच,
1: लालच
0: मोह जाने
1: माया,
0: मोह जैसे मेरा मोह है, आपका मोह बच्चों पे है,
1: हाँ हाँ,
0: पत्नी पे, ऐसे मोह होता है, और मत्सर,
1: मत्सर नहीं जाने।
0: ये काम क्रोध लोभ, काम का अर्थ है कि आप स्त्री पे ज्यादा आकर्षित रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ
2: फरलांगंस,
0: हाँ फरलांगंस, तो उसको बोलते हैं। तो इस सब से मुक्त हो गए तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। जब ये सब चीज से आप मुक्त हो जाए, इनकी तरफ ध्यान न दे, इससे ऊपर उठ जाए, तभी परमात्मा आपकी तरफ दौड़ते आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जय जयकार होती है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज छोड़ दिया था। तुकाराम को, मीराबाई को जानते हैं आप?
1: मीराबाई हाँ।
0: तुकाराम भी ऐसे संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, उनको सब जानते हैं। उनके शरीर ब्रज में विकारों न पाऊं तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने जो विकार, शरीर के जो विकार होते, दोष होते, उनमें कभी उन्होंने पाँव नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और हृदय में ही ब्रज बना लिया था। वो कभी ब्रज में उन्होंने पाँव नहीं रखा, उन्होंने ब्रज में नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना शरीर ही ब्रज बना लिया था।
3: क्योंकि आपने, अरे अभी हमने यहाँ पे पढ़े आगे में कि हमको भगवान के पास जाना है, जबकि भगवान खुद हमारे में ही है। तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा ना कि आप अपने अपने आप को बना ले ऐसे कि यही ब्रज धाम है, तो उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा।
0: हाँ, ब्रज धाम को यहीं बसा दिया जाए, अपने शरीर में ही ब्रज धाम बनाया जाए, तो उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो जा सकते जाएं, लेकिन जो न जा सकते वो अपने शरीर को ही ब्रज धाम बना लें। तो क्यों ना एक सुंदर सा, जो कि उद्धव के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, और उनका एक जो बहुत सुंदर भजन है उसको चला दिया जाए।
1: ऐसा मेरा तो दिल कहता कि संजय तू भी कुछ बोल।
0: तो बोलो।
1: राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि एक गोपी के घर लल्ला माखन खा रहे हैं, और उसी समय गोपी ने लल्ला को पकड़ लिया,
0: रंगया।
1: हाँ, तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊंगा। ऐसे बोले कन्हैया ने और गोपी के, और तो गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता हूँ कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा कि अरे तेरे बाप की सौगंध पर गोपी और ज्यादा खींच जाती है, और लल्ला को धमकाती है। धमकाती समझे?
0: हाँ, डांटती।
1: डांटती है, परंतु तू मेरे घर आया क्यों, गोपी कहते हैं। तो कन्हैया ने कहा, अरे सखी तू रोज कथा में जाती है, फिर भी तू मेरे तेरे छोड़ती नहीं। इस घर में का मैं धनी हूं, धनी का मतलब ना कि इस घर का मैं धनी हूं, ये मेरा घर है, ऐसे कन्हैया जी कहते। तो गोपी को आनंद हुआ, और मेरे घर का और कन्हैया अपना घर मानते हैं। कन्हैया तो सबका और मालिक है, सभी का घर उसी के है, और उसको किसी की आज्ञा लेने के जरूरत भी नहीं ना। जो भगवान को अपने घर में बस बांध लो तब भगवान के सब है ना।
0: हाँ।
1: तो गोपी कहते, तुमने माखन क्यों खाया? बोले ऐसा क्यों? तो लल्ला ने कहा कि माखन किसने खाया है? इस माखन में तो चींटी चढ़ गया था, तो उस निकालने के हाथ डाला और इतने में ही तू टपक पड़ी, ऐसा। तो गोपी कहते हैं, परंतु लल्ला तेरे होठों के ऊपर भी तो माखन चिपका हुआ है। कन्हैया कहते, चीटी निकालते थे तभी होठों के ऊपर भी और मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगी तो माखन होठों पर लग गया होगा। कन्हैया जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं, ऐसा है कि ना? कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना किसी को आता भी नहीं, क्योंकि उसका चलाई भी कुछ खास है ना। तो गोपी ने पूछा लल्ला को, घर में खंभे के साथ डोरी से बांध दिया।
3: अच्छा,
1: डोरी से, रस्सी से बांध दिया उसे। गोपी ने जब उसे डोरी से बांध दिया, तो आगे के वृतांत अभी बाद में सुनाया जाएगा, पहले गीत की ओर क्यों ना चलते हैं।
0: जरूर।

तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम। यहाँ से हम और उस प्रोग्राम को ऑफर लेते हैं। अभी आप लोगों एक मस्त भरी प्रोग्राम को श्रवण किया है, वो है हमारे कोड़ी का साथी संजय भगवान से, शांता से और राजेंद्र जी से। और यहाँ से हम आपको हम देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। दोस्तों चौनी नंबर वन है, आज है मंगलवार है नेख यूनी। हाँ आज मंगलवार है नेख यूनी। घड़ी की ओर देखा जाए तो है हो चुका है क्वार्ट फोर एलफ। तो आप लोग को हम एक घंटा करीब सुनाएंगे सूरीनाम के और देश विदेश के समाचार। कारण कि आज शाम को हम नहीं रहेंगे, नौकरी पे जाना है, इसीलिए प्रोग्राम को हम अब बनाते हैं और शाम को 6 बजे ये न्यूज को हम हर हाल करेंगे। अभी आप लोग 1 बजे बीबी साहेबा रहीम बख्श के प्रोग्राम को श्रवण करेगी 3 बजे तक। अभी सुबह से आप लोग भैया संजय से भगवान से प्रोग्राम को सुना है, यही आशा उम्मीद से कि आपको जरूर उसका प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। यहाँ से हम सूरीनामी देश सूरीनामी न्यूज और देश के समाचार आपको हम बस सुनाएंगे। यारो सुनते रहना और शाम को 6 बजे हम हर हाल करेंगे।

कलाना जाने ऊंच नीच, कलाना जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम नमस्कार, प्यार भरे राम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। हमारा प्रोग्राम आप लोग हर शनिवार यानी कि हर शुक्रवार को और मंगलवार को सुन सकते हैं। तो हम तुरंत चलते हैं सूरीनाम की ओर, सूरीनाम की ओर हम चलते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीते हुए दिनों में सूरीनाम का डीएनआ में स्टार्ट फॉर्म बस्कुल लिखने के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ है। ओएम ने कागज पठाए थे तीन रो तीन लोग को स्टार्ट फॉर्म बस्कुल लिखने में, और यानी कि बस्कुल लिख करने को वो है सोमोहारजो और साथ साथ हुफ्त्रांत और नूर मोहम्मद। तो इसके बारे में कितने लोग है कि जो देना में पॉजिटिव यानी कि खरोत दिल से यानी कि स्टेम कर से कि सबके माख ओ एम को ऑन द सुख करके, और एक दो तीन लोग थे जो यानी कि कहा था कि चोरन के बचाओ, चोर लोग को ना चाहेंगे सजा मिले के, तो वो भी बात है। एनडीपी के लोग कोई थे जो कहा था नहीं हुफ्त्रांत को नहीं चाहिए और सेल्फ सोमोहार जो ब्रोंतो को भी ना, सेल्फ ब्रोंतो अपने आप को टेकन किया था कि मुझे स्टार्ट बस्कुल में करो, हम अपना सच्चाई रेक्टर को बनाना बताना चाहते हैं। स्टार्ट फन बस्कुल के मतलब ये नहीं है कि आपको सजा मिल गया है, वो देना को सिर्फ जो स्टेमिंग मांगा है कि तीन लोग को हम ओएम ऑन सुख कर सके ना। बस इतने में भाई कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए थे कि मुझे नहीं करना है स्टेम की हाँ या ना। इसमें सबसे बड़ा लोग जो है, सबसे बड़ा आदमी जो देना के फोर्स इतर है और वो है अधीन, भाग गया था भैया और अपना हथौड़ी दे दिया था, ऑफर दे दिया था दूसर का वार्नेमन फोर्स इतर का। तो इसके बारे में एनपीएस का और डिफेंसी मिनिस्टर रोनाल्ड आसन कहा है कि देना फोर्स इतर अश्विन अधीन के बोले रसेन फरकेर थीफ का हंडल दौड़त ऑन हाउडन फॉर स्टेमिंग द साल तलो ओपन बाय एंड स्टार्ट फ्रॉम बस्किल स्टेलिंग फॉर द थ्री मेंशन। तो ये बात असन ने कहा है और डिफेंसी मिनिस्टर कि तू सबसे बड़कुआ बाटे देना फोर्स इतर बाटे और तू कुर्सी छोड़ के चल गए ले बाटे कि हमार ऊपर कोई उंगली ना रखाई कि हम बुल्ली बाटी कि चोर के पकड़ या चोर के छोड़। तो चोर के चाहे पकड़े के भैया लोन मौसी लोन कि चोर लोग के चाहेगा बचावे के, तो अधीन छोड़ के कुर्सी चल गए रहा और कितना लोग उसमें रहा जो चोर के बचाई से मखरू उत्तर देश देना के लोग जो था वो कहना इस सब के स्टाफन बस्कुल लिखें कि चाहेंगा ऑन द सुख करे कि हम लोग थोड़ा बाटे यहाँ पे रेक्टर बपाल करेगा कि के एमा बदमाशी करी से के ना। तो आसन बोले हैगा एनडीपी बोले हरदम बोले हम मांगेला फॉरनिविंग के, हम मांगेला करप्शी बस्ट्राइड करे के एंड उप मुबारक मिनिस्टर श्री नाम वो ऑन अ फंकल के फन रेक्टर आलो रोइमते के चाहे अनबीट करे के और बोले हैगा
een rechter bepaald kreeg. Ze hebben vrijgesproken. Heb je na? Obole, je gaat voor de vernieuwing. En de kabel hega asen bole he. Obole hega to corruptie mangen bestrijden kere. Obole ja. En to mangen hega. En wie onschuldig wordt dan vrijgesteld. Ze asen een programma mee. Adin gaf in zijn overweging aan de beoordeling voor in staat van beschuldigingstelling gebaseerd moet zijn op een voldoende onderzoek en een zorgvuldige afgewogen oordeel bolle tapukarer bolle zorgvuldig bolle chijuanarha to ikar bare mein asan bolle he bolle op basis van de beschikbare materialen kon hij niet te overtuigen konden bij voldoende was voldoende aan de maatstaf die de wet voorschrijft van de politieke bestuurlijke afwijking. Assen vindt het vooral teleurstellend Kisomo Harjo, die in zijn ogen zoveel belovend is geweest als parlementariër, nu in zo'n situatie is komen te verkeren en aankijkt tegen een mogelijke inverzekeringstelling. Jo hartem somo harjo, Paul somo harjo, apreke klingboy bolat raha, badka baat raha, ak khud aajaike, aur up hansge hai. To ye sab baat hai dosto, jo outward minister an Assen ne, बताइए है तो हमारे यारो हम चलते भैया तीन डाकू के ओर भैया इसब ओतो पे जात रहा भाई ओतो पे जात रहा और देखे एगो ई बाइकर बैसिगरी वाला जा है 8 तारीख यूनी के बाद थे मौसी लोन तो अभी देखे जा है भैया बस इसब का करी से ओतो लेके बैसिगरिया के क्लेम रहे करी से क्लेम रहे ये करी से भैया बैसिकिया के और कटलीस निकार के गैला ओके रूफ करे भाई गैला ओके बैसिकिया वाला के रूफ करे और उतरे में स्कोतु ओइसी से आवत रहा जे देखी सिटुवसिया त स्कोतु का करी से बस रुकल ब ये लंडवन जे देखी से ओतो हुआ भागल ओ तो लेके भाई देखे सिपाही आवे है भगल है भैया क्वाटा के सिपाही ओके दौराई से भैया और जाई ओके क्लेम रहे करी से ओतुआ के जाए के क्लेम रहे करी से गा और आगे से चुरवन बैसिगिरिया के क्लेम रहे कर ले रहा और का बोले कटली से के भरूफ करत रहा और बोले तू न फरदाख्त पुलिसी के देखी से इसे भगल ओ तो लेके सिपाही जाए के अब उल्टा ओतुआ के क्लेम करी से शार्लस बुर्ग में भैया शार्लस बुर्ग में जाए ओके क्लेम करी से और बोले ऐतलक तर होकते फान फिंदर अन द क्वार्टर वे क्लेम खरीदन ओमा गाड़ी में पाई से भैया कपशोंस तू जाने मुड़िया बजून से हम पहले रे करिया करिया स्वार्थ खसिक्स मास्कर तीन को कटलीस पाई से द आन खतरोफन खुदरन एंड फुर्तोइखन सब पाई से दोस्तों और तीनों चोरन के तीनों लुटेरा के सिपाही गिरफ्तार कर लीजिएगा और बोलीजिएगा जो ई बाई करवा रहा जेके सब रूफ कलर ओके चाहे सिपाही में मेल्द करेंगे On openbaar minister verzekering gesteld onderzoek duurt voor. Toen zei hij: Deko, kia hoe he? Bijsigri chalawe he. Aur jai ke dek roofers toke bijsigrio wal kena chode bahut roof hoe bhaiya sarnam des me. Abi aur baat aap log ke roof ke baare me. Hum bataenge inge dosto roof bahut jada des me hoe he. Lekin aap log ko hum aur hiya hamara bhaiya Hanis Manorat bole hai. वो रैक गोते क्यों अब देखो ये तो ये इंदार तक यार के सिपाही भाई ई और एकर भाई गए लहा तेल भरे यानी कि को दुकान के आगे रहा सनिचर के बात है न्यूयॉर्क का फोन देख में और बोले तेर होकते फा अधित नोख्त वेख इन रिसोर्ट लतूर और वहां पे बताई गई है वहां पे बताई सब दो भाई एगो सिपाही रहा और ओकर भाई भी रहा सुपरमार्केट के आगे पर गाड़ी पर केल कर ले रहा और एगो दूसर ओतो आइल है बस इस सब के पीछे के बम्पर पे मार दे इसे तस अब ये सिपाही रहा जेकर गाड़ी मारी से
politieambtenaar had 32 jaar tegen geil hij ook een auto papieren mangen hij was lagel is een lades koutoa ze los en bhagel hij chord koutoa dus koutoa los een scot dagi ze bhaiya ki ruk ja na bhag was u aile terug was koutoa ke pistoolwe chin lei ze dosto ladai phadai me koutoa ke pistoolwe chin lei ze en chin ke bhagel hij to is ab koutoa oke dawrai ze is koutoa 32 jaar wala और भैया जे दौराई से तो ओही किसी पहिया के पिस्तौल वा जोन छीने रहा बस ओही मसे चलते ओ तो में लगल सी पहिया के दागे लगल दागे भैया यहां बताओ द पुलिस मान से तो अख्तर फॉलकिंग मार वेर दार बे में से एक दिन स्वाफन बस कोतन और लगल एकर पेट में भाई एकर रेखतर बीन में लगल है राहत एरस्ट खवन सेन ब्रूर ब्लीफ सेन ब्रूर ब्लीफ ऑन खदेत ओके ना लगल है और एक के सबन Na het schiet in een redende verdachten, hier aan weg mee is op Goesgehega verdachten John Dagera, Sipahi zegt wat onderzoek dus toe, te betalen Sipahi en de Suami veilig na hen. Tobhala Hamara, Hamara Janta. कैसे वहां पर फेल रहेगा अब देखो आप लोग जानो हैं एनडीपी के शन फाउंडर सान भैया हां कैबिनेट के प्रेसिडेंट रहा बाउटर्स के इन्हें इन्हें एनडीपी के शन फाउंडर संग तो शन फाउंडर संग भैया बोली से बोले हैं जब कोवालिची है तो कोवालिची एनडीपी के है तो बोले जितना 51% है जो कोवालिची में छोटा छोटा से इतल लेक आयल है बोल ओके चाहे सब एनडीपी के बात सुने की वन एनडीपी चोर के बचावे है तो बोले तू लोग कभी चाहेगा चोर वन के बचावे के वन लोग क्वालिटी में बांटे यहां बोले हेड कान एर बे हम नीत इन दैट क्वालिटी में 34 सीटल मुइते हीफ ऑन बेसलुटन टू नेमन एंड क्वालिटी इज वोल्गन हम यूज नोडिग ऑन क्रूशियल बेसलुटन टू स्टूडेंट मान नीत फॉर क्रिमिनल मेंसन अस ओएम नामलिक दिस फ्रॉग moet iedereen namelijk tegen de corruptie zijn. Or in Lim FM met Bolly Sega van de Sun NDP dat meerderheid van de zetel heeft en dat alle partijen zich bij de cruciale aangelegenheden moet neerleggen. Bolle, uw bos is den visie. Bolle, want die onthoudbaar al dus gewezen kabinet-directeur en de NDP तो भैया लोन इसे बोले करप्शन बचाई और करप्टर लेंदे किसे बचावे है hey. En dit te stellen dat partijen niet altijd hun eigen standpunt kunnen doordrukken. Daarom zitten zij juist in een coalitie. Van der Sand stelt dat de dergelijke zaken binnen de coalitie. De coalitie kabaatje. Nee, Van der Sand ziet de samenwerking tussen NDP en de VHP wel zitten. Mis daar harde afspraken aan het grondslag liggen. तो दोस्तों यहां पर तू देख सको है जनता भी देखे है कि एनडीपी इस नीड फॉर करप्शन बस्ट्राइडिंग मेंशन से सही नामलेक द हुफ्द्रात नामलेक तो खान फर्दीदख कि ओके तुलो ना पकड़ो भैया तो जे हमार देश के लूटी से ओही किसे बचावे और हमार जनता हमारे मीठा मीठा जनता ना देख पावे बिचारन और उस सब के छोटा छोटा पकेता कैर में भरमाए बा आ जाई के इस सब के स्टेम करके बैठाई से वार दोन इस देश में से द करप्ट आने फर्दीद खसेन एन अधीन इस एनडीपी दी इस गोन वेगलोपन फ्रॉम से स्टूल एंड हीव मनेर द अंदर फोर्सिटर वार्निंग फोर्सिटर दार ते गान सेटे Het United Nations Country Team in Suriname heeft zijn jaarverslag van 2025 overhandigd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een samenwerking op het aanwezige Amerika vorig jaar 12 miljoen hebben geïnvesteerd in meer dan 60 ontwikkelingsprojecten in Suriname. 12 miljoen Oberisiamis hebben geïnvesteerd in 2025 mee. 60 ontwikkelingsprojecten Suriname. Or bataye gaye hai for the uitvoering van het programma was er budget van 17,4 miljoen begroot waarvan 14,2 miljoen werd gemobiliseerd dosto to ye baat hai bolega uitvoering prestatie van 85% Amerika investeert kan die zeggen
VN werden de middels ingezet voor projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale inclusieve klimaatbestendigheid, institutionele versterking. 18 VR-organisaties werken daarop in samen met de Surinaamse overheid en andere partners aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Afgelopen partij die ik Amerika Suriname kie, uiteraard het project meer. 12 miljoen investeer krise hamare janta. To yahan par bataye gaye hai uitslagstemmen van de WIPA over mening van de rechtsstaat, zegt Fernandez Mensen. John Otra Admi, toch stemkrisis de aanname. Bole hega uitslagstemming hega Nationale Assemblee mee. Of bole hega Nationale Assemblee mee. Met de vordering van de PG om 3 voormalige politieke ambtsdragers in staat van borstekeuring stellen. Bole daarmee is voldaan aan de wettelijke vereisten. De grond van artikel 140 euro. Staatsrechtsgeleerde Bolehega Hugo Mendes ziet in het parlement debat 2 duidelijke stromingen. De eerste stroming leest de wet strikt en stelt dat de PG slecht een beknopt gemotiveerde verzoek hoeft van de overleggen van vervolging. De Fernandez mensen zijn er maar mee. Bolehega Hamari Janta. हम और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर चलते हैं तो यहां पर बातचीत हो रहा है यहां बातचीत हो रहा है दोस्तों खीबीबी मुत 118 मिलियन बतालन अन फोनसन स्लेक 32 मिलियन स्टार्ट अप एट बोगरोटिंग भैया खीबीबी जाने के है John Ketwan heeft een baard het ministerie van GBB in staat stellen uitvoering te geven aan rechtelijke vonnis met financiële consequentie. Financiële vonnissen geschieden het betrekking. Toch heb je een zaak ook leren. Ik er baren mee. Minister van Grondbeleid en Bosbeheer heeft voor 2026 schatting 128 miljoen nodig om uitvoering te geven aan de rechtelijke vonnissen met financiële consequenties. Door beperkte begrotingsruimte is echter 32 miljoen opgenomen in de begroting. Je maakt een begroting 128 kali 32 miljoen. Bolega voor de rechterzaak ook John Jai Okerbare mee. Volgens de minister zijn er ongeveer 25 vonnissen die financieel verplicht voor de staat zich meebrengen. Bolega. Een bedrag van ongeveer 55 miljoen. Centraal en de GBB stelt dat het ernstig ernaar streef uitvoering te geven. Bolega. Ipa is wakker hamiliga. Bolusup ke staatstekort hega. Sfonus ke bareke. Toen jane admilo ke keet peet ke kuch ke kagat pagat. Sakwa voor de rechter jij. Isup ke bicha hi oker bare me. Or pap deko baya. Doei so hajar American dollar rovile. Suriname me baya chinoa ke na na ha. Doei so hajar Americans dollar baya. Topaastraat के बाद चीते रूफ ऊपर पाल भाईल है और चिनुआ के भाईल है भैया 3:30 बजे दिन दुबरे भैया ना निया बतावे हैं हाँ क्रेकर पुलिसी विरोध 3:30 बजे मेलिंग पाई से कि रूफ भाईल है भाई रूफ भाईल कस के रूफ भाईल 200,000 भैया हाँ Al bole hega voorlopige informatie bestond de groep verdachten uit 2 Braziliaanse mannen en 3 mannen van de Creoolse afkom, 10 go Capri. Al bija 2 go Braziliaan raha. Al is heb geil hebben ja pistool leken roofkarise. Hoe de verdachten precies te werk zijn gegaan en onder welke omstandigheden het geldbedrag wegbuit gemaakt wordt momenteel door de politie onderzocht. Bij de overval raakte niemand gewond. Na de daad sloegen de verdachten op de vlucht met de buit. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mensen, abi uske bare mein aur kuch hoga to aap log ko hum zarur batayenge. Want jaise humne padha tha ki pakdaye gaye hain log bhaiya. To abhi kahin hum padhe the uske bare mein jaise hoga
Toen hem betaald Trump ja uitgeschoeld tijdens volkslied voorafgaan aan de NBA finale. Arre bhaiya sportje baat met Trump geil he hua pe. Is uitgeschoeld en uitgefloten in de Madison Garden. Waar maandag de derde wedstrijd in de finale van de NBA plaatsvindt tijdens het volkslied. Saluleerde de Amerikaanse president toen dat een grote scherm in het stadion getoond werd. Klonk gedurende enkele seconden een fluitconcert buiten het stadion New York. Waar de basketballers van New York werd Trump bij aankomst ook al uitgefloten. Ik zou willen dat hij hier niet was. Hij is geen echte fan. We hebben hier ons hele leven opgewacht. En hij laat alles weer om het draaien zoals altijd. Toen ook is hij namang. Ja, is hij baat. Toen hebben we een gita. Ik ga hem zo naar. Abi hem wapens aan.

तो दोस्तों हम अपना समाचार को आगे को बढ़ाते हैं। अभी आप लोग को हमने बताए थे जो 200,000 200,000 अमेरिकन डॉलर रो फैला चिनवा के भैया सूरीनाम देश में, आपको हम बताए थे। तो बातचीत और आगे यहाँ पता चला है कि जो रूफ करके भगल रहा एगो टैक्सी शफेर वास ओक बतरों के मैं से एगो टैक्सी शफेर भी ओम रहा और ओ तो लेके इसे भगल है त्योता आली।

यौन इसब चलावत रहा और सिपाही जाए इसब के क्लेम रहे करी से भैया एट इट लुक्त वेस जिनार ओम बत्रोकन ताक्षी फिर क्लेम तरेदन एन आन तो होदन मेंसे और बताए गए है गा जितना चीज सिपाही से बसलाक करी से 200,000 अमेरिकन डॉलर इसब ले रहा बाकी पुलिसी अक्सी वेर 165,000 अमेरिकन डॉलर इसब तरह पाई गए है स्कूल तो पाई गए है ना द आउटगवर्ट इनफॉरमेशन फॉर द डिफेंस स्पेशलाइज्ड इंटेल यूनिट सौदन इन टोटल 7 मानन एंड 1 फ्रॉम सैन अनहोदन 7 मर्दाना और ओमा एगो हमारा नारी भी रहा भैया औरत रहा जो ओमा रोफो में शामिल रहा लेकिन सब पकड़ाई है दोस्तों एंड दैट इज अ गुड जॉब हुई वर्क फॉर द पुलिस द मार्क एक ओकन कीर्च जखमेन से मार द एसेट वेरे वो कामबियो के भैया एंडम लीक कर ली गए है कोलाइस वे उठा ले के से को कामबियो से जहां हम लोग जाएला पैसा लेवे सिरी फेस्ट मोनी और एक्सचेंज बोरेस्ट्रात में जोन बा बोरेस्ट्रात में भैया वहां पे को कामबियो है मोनीज एक्सचेंज एंड बोरेस्ट्रात फॉर नोमन वर द सेशन 5 तक यार को कामबियो हाउदर एर आ सोमवार के रात के जो आइल है ते देखे ओकर साक पन जो रहा सब तूर टूडाड़ी से इन खबरों कर भैया भीतर घुसल है और जो अंदर सुख करी से ब्लेक दादस फिया अख्तर सैद फन वोन खबाओ तू कहाँ हाद फर्शाफ और ओमा कोई न रहा तो सब फ्रे हंदे जात रहा इन ड्रिंग इज फॉर शेयर द इज एन डिफन एसर इन फॉर फॉलकस ट्वे दुरन वरना से द रेंट फन कम यू बिनन ड्रोंगन एन माल जो भीतर गेल है बोले अन क्लोज मी वन इन फलिता एंड सुरनाम से डॉलर्स वारन बवार द पुलिस फॉर मिंदर हिव द आनगिफ्ट एर वेर वर्क ऑन द ऑफस्पोरिंग तो उतरा पैसा सब चल गए पता ना है कितना रहा मा भाई लेकिन अनकाम भी हुई बस हेल फील खेल नतुलक इन से क्लोज तो अबे 200,000 चिनवा के मारे रहा चखले को पकड़ाई गए है लेकिन ही यहाँ पे फिन क्लोज चोरी भले कम यू के तो बेस्ट लो स्ट्रांस हमारे दोस्तों सुरिनाम इस ऑन फेल अखमें से वार बत्रेफ ओवर दी रोफ असन के बारे में अभी बताए थे कि अधीन के वो क्या क्या बोला था जो छोड़ के और अपन कुर्सी चला गया था जो समय पे जहाँ तरा बस लेस करे के यानी कि जो हम लोग के स्टार बस्कुल लिखने के बारे में वारों ही अधीन ओगनी में खस्ते ओम दत्त बोले रा दोषी या मोइना है अब बोले हैगा तू के बाटे फोली रखब और दी करे के दद्दू दब रेख्तर एन de OM gaat dat doen, de rechter bepaalde het. Zo is het mensen. Ik admis soetella bed legerig man, slachtoffer geworden van een bhaiya. Oudemia 61 jaar ik admis bedi meer ha. Is in de vroege ochtend atwaarke. Als ze geile bhaiya oké gewapen. वोनिंग रूफ करी से और लेडिंग कंडाल में भैया लेडिंग में भैल है यह हम बताए द्री खवापन मान द्रोंग द वोनिंग फन द स्लाख्त ओफर बेनन और घुस के जाए के उकर घर में से फलिता चौराई से भैया फोकस फॉर लोप के इंफॉर्मेशन से फॉर शेयर करी से द दादस वोनिंग एंड फॉर स्काफ्टन से शेयर फॉर फोकस टू खांग घुसल है और बोले है गांज घुसल है क्रिमिनल वन द 10,000 एसआरडी 100 गो इन एन यूरो और 100 अमेरिकन डॉलर इसे प्ले के भाग्य है द पुलिस वेर ने इंसिडेंट इन खिसका कल और बतावे हैगा कहां पकड़ाई भैया तो लेके चल गए और ए और का बोले हैगा 61 यार का बेट लीखरी मान हां भैया तो ये आदमी के इतरा सभन चोरी करके भग गए एक दरी तो भैया या खवेरुए बंदूक किए चोरी करके ले चल गए कातवेक वेख में कातवेक वेख के बाद थे सोना के गहना पैसा कौड़ी बंदूक सब ले के भग गए भैया कातवेक वेख के बातचीत है तो हमारी जनता हम चलते हैं और
और शुक्र की गार खवन बेस्ती किसी दिन जान जाने वक्त मतलब शुक्रती जो है सामुएल कुलदीप सिंह स्ट्रांत कुल ना कफलुद्दीन स्ट्रांत के बात है और फन रोक है स्ट्रातन हो तो फन मनीला ईएनएन बताए गए हुआ छोड़ी भोकी से भैया एगो सिक्योरिटी गार्ड के बफेले के आदमी के और यहाँ बताए इंसिडेंट वह तो फरदख्त खकलीत इन क्राइम क्लियर खतरा तो यहाँ बताए गए और भोक के सिक्योरिटी गार्ड के और पेल भागल भाई तो ये बातचीत हो रहा है हमारी जनता कहीं के और नहीं हमारा श्री नाम देश के। तो दोस्तों आप लोग जाने हैं बकरोतिंग भैल है और यहाँ पे फेस के लोग जो है द फ्रीनिंग फन इकोनॉमी से श्री नाम से फेस प्लास फ्राक्टेकंस बाय द वे से वार ऑफ द रेगिंग है बकरोतिंग स्टॉकआउट फन 2026 ही वरीकन और एक बारे में स्वामी गिरधारी जो नहीं कह सके तारे से फेस के बद्राख है स्टॉकआउट फन 8.1% फन ब्रिटो बिनेलांस प्रोडक्ट फन बीबीबी सो आज रखेरिंग स्टेल मार 7.7% है गिरधारी जोरी से ना 5.8% मार 7.7% है द राजफा मिनिस्टर 21 मई के गो नोटा पठाई से और पठाई से onderwerp staat begroting 2026 goedkeur gekregen en bolle uitgaven bolle 77,4 miljard hè. Tegenover totale ontvangkosten van 64 bolle deske bitter aiga 64,6 miljard en ook er uitgaven is 77,4 miljard hè. Volgens de regering resulteerde dit een begrotingstekort van 12,8 miljard en wel 5,1% van de BBP dat voor 2026 vaststelde op 252,2 miljard tekort hè dostoe. En ja, betaalde gij hè. गिरधारी बोले हैं बोले सितंबर 2025 में नोग राम ऑफ ऑनगेवेर 180 मिलियार्ड रहा द न्यू रखरामिंग फन 255.2 मिलियार्ड बकेंद भाईल है। तो दोस्तों और लंबा चौड़ा पैसा के बारे में लिखा गया है लेकिन हम आप लोग के छोटे रूप में बता दिया है कि ये कैसे है और कैसे नहीं है। श्रीराम में बहुत पानी बरसता दोस्तों चारों बगल डबा डब पानी अबे भरा हुआ है और वहाँ के मित्र लोग इस दिन से बोले है बोले हुआ पानी अबे ना रुकेगा दिन के रात के दोनों पानी बरसे हैं और फिर दर तक खराद है लेकिन बारिश का वहाँ थम नहीं रहा है दोस्तों। और ये बातचीत है जो रखेरिंग वहाँ के फन ढोक है इस तरह थे एकदम खराब हो गया भैया भाड़ी भाड़ी गढ़ा है फन ढोक है इस तरह स्लांगन हो इस तरह के बारे में अब बोले एर इज नॉक निच कॉन्क्रीट ऑफ ताफल खल है ओग नी दट ओन से रेख साथ तेगन दस्तात वोट इन खतरोकन हुएल दट अन मोखल खेत इस एक बैताली दिरेक्टिक फर्सी खुदा पक्ष के बारे में है हमारे यारो हमारे प्यारे प्यारे जंदा। अब हम जाएला सोमो हार्जो ई पौल सोमो हार्जो के बाद भैया पौल सोमो हार्जो कितना दिन से सूरीनाम के प्रेसिडेंट के भैया ऑफिसर है पैसा पावे है तो पर्चा लुहर के टॉप मान है पौल सोमो हार्जो वो पैसा पावे हैगा स्टाट ऑफिसर के 60% फन सलारस फन प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक सूरीनाम अस आमतनार और मैं लीव ते 83 यार के हो गए है हु फील सो एक अन पेंशन फरदीनन हुक्स्टस 20,000 मार एक क्रेक नि 60% फन प्रेसिडेंट सलारस मेट अले अन इमोलिमेंटन व्हाट गा एक एरमे डून ए गीव टरुग Wat ik over heb, geef ik terug. Ik heb niets nodig. Ik heb auto's, huizen. Ik heb alles, zei Sommelharde vrijdag tijdens een persmoment
volgens de politicus kent Suriname op dit moment twee staatsadviseurs, namelijk Somo Harjo en Ramon Abrahams. Van wat zijn werkzaamheden betreft stelt hij dat zijn adviezen als adviseur goed door de regering wordt gevolgd. De Rood-Witte Partij gaat zich in de komende periode sterker inzetten en op sociale Tobaya bole Paul Somo Harjo bole mooi advies dewe he. Bakke ham loke deswe na mooi chale bhaiya ta kaisan advies tu dewe he. Bhaiya Somo Harjo en Abrahams ham loke des ke vooruitgang na dekha he Somo Harjo bhaiya. Dan mag u zelf kan zeggen dat je heel goede advies geeft. Op de kobaya SLM toestel break landing. Af naar touchdown. नीचे छुई के और फिर चढ़ गए भैया पासासी डराई गए है डराई गए प्लेन उतरत रहा एसएलएम जमीन पे गोड़ धड़े से पहले फिर चढ़ गए है पासासी गुस्साई गए है डराई गए है पासासी इन द Gecharters toestel van SLM raakten het ware 7 juni lichtelijk in paniek nadat de landing op de Sandrij een laatste moment werd afgebroken en een vliegtuig opnieuw opsteeg. Toen je baat he, uiteraard op een tjahrge he, PY993 Amsterdamse Suriname geila. Op sociale media staan beelden waarop te zien is hoe de toestel de landingsbaan raakte. En vervolgens kort deze touchdown weer vermogen maken opnieuw de lucht in te gaan. Na Uterpijs via Gordharadharad en luchtvaartscanner gaat het om de zogenoemde bullen of doorstaat een reguliere veiligheidsprocedure waarbij landing wordt afgebroken en later opnieuw wordt uitgevoerd. Hoewel dit in de luchtvaart niet ongebruikelijk is, zorgt het gebeuren van lichte spanning onder sommige passagiers omstanders op het AWH. Dat had mede te maken met het feit dat zondag ook de herdenking plaatsvond van het vliegraam van SLM. 7 juni 89 keer Oregoplein Girallaha op het toestel van SLM neer tijdens de nadering van de rij. Nabij kwamen 178 mensen dood. Juist door die beladen datum leidde de onverwachte manoeuvre zondagavond tot ongerust reactie op de sociale media. Verschillende personen gaven aan dat het afbreken van de landing het extra nerveus maakte mensen. Oei rood giral ha hem lukke SLM 19 en 89 keer. Oei plenua op SLM pin goor dharke. Oor op een banti nietje dharke. Pintje harge upper. Janta dadaige ki juist oei rood. I chij bhail hai. Hamare yaro, hamare pyare pyare janta. Sang bhaiya, chinua bhaiya, des mein chamke hai, paani charo bagal budal hai. Aur bole, beshak main anskaf eigen mobile water pump tussen 160 tot 200,000 Amerikaans dollar bole, ek pompu bhale, bikane ukine mange hai. Aur bole, mobile water pump jo hiya se hua hatai sake hai. Aur Guyana se digo leni kari se bhaiya, ab sang mange apreki ne. Aur bole, ek heb de aanbesteding gehouden voor 3 mobile pompen en het is nu wachten op de ik weet niet wat de prijs precies is, maar ik heb begrepen Kegel mobiele pomp 160 tot 2 ton dollar mee mile hebben ja toen je hap je janta behoed en jani ki boli se ki jo nau go milala upompon kaha hai bhaiya sang jo tu phin se paisa mange le ke kine bole upompon miliga ki koi ke ghare dharal lahi the bawej pan for the and that he faker confronted word met an argument waarom geen gebruikbaar van een soortgelijke waterpompen die rijstboeren gebruiken. Die pompen beschikken echter niet over nodige capaciteit om hevige wateroverlast te lossen, aangezien de capaciteit van de pompen van Guyana 10 maal hoger is om aan de behoeften van Suriname voldoen. Zijn pompen nodig met een capaciteit die 2 maal groter is dan de Guyana. De bewindsman is blij met de steun van de buurland aangezien mede hiermee het Rijmawal project. To pani ke baare mein hum log ke Suriname desh to bud gaya hai hamari janta aur ye chinwa bichara bhi na jane u ka kare
और का ना करे हमारे दोस्तों। तो आपको हम और आगे को अपना प्रोग्राम को सुनाएगा क्या हुआ और क्या नहीं है। वी का फुटबॉल तो आने वाला भैया, तुलो जानो है एकदम आएंगे मुड़ी पे आएंगे फुटबॉल। तो SVB जो है श्रीराम से फुटबॉल बोन जो है बोले हैगा बफेस्ट तक फर को वे का कार्टन ओब्रेंस मु श्रीराम से फुटबॉल फर स्टेरकन कार्ता बेचे भैया प्रोतिक डिस्कशी दी ऑन स्टैंड ओवर द बास्केटबॉल है फन वे का कार्टन ऑफ द श्रीराम से फुटबॉल गमेंस्काम और बोले हैगा श्रीराम से फुटबॉल बोन बोले क्रिक द ऑर्गेनाइजेशन फन फीफा ने मोगलिकहेड ओम बेपरक अंतर कार्टन फॉर द वर्ल्ड कैंपियनशिप ऑफ द नेमन op het moment dat hiervoor een beslissing moest worden genomen, beschikte de bond echter niet over voldoende financiële middelen om de kaarten zelfstandig te financieren. Bye. Tussen naam te bij ja, een beetje hoe ze op kali rechtig hoe je televisie bedrijke, en ik erbare mee, ja, ik NPS ke voorzitter doen he, en hamara vice-president he, ik erbare mee, 500.000 dala, en ik abole hega, bari SVCS ke, milai ke, jure, hoe ze op ke kijk hega, अन टेलीविजन के रखते जो है ओके देखे के हमारे जनता। तो देखा जाए पाकितो भैया रखेरे के घुस गए है जब से गए लोकर कुछ सुनाना है उधर चिनवा यानी कि ऑन द वेस मार्क स्टक कर इस रहा डेमोस्ट्रेट कर इस कौतु मांगे करे के मांगे करे। तो यहां पे बताए एनडीपीर स्टीफानो पाकितवी पाकी पाकितो Bierveld zit in tegenstelling tot Jane Sayer Mixon en Reynold Peppi van Els niets mis met de besluit van de regering om recent 2 waterpompen Guyana te lenen. Volgens de politicus is helemaal geen sprake van schande en zou de Surinaamse justitie een pakje token moekkole bij jou op de NDP hier hoe je op hele NDP ke behoed behoed baat bolletra और आज एनडीपी के काम दे दीजिएगा तो चिरैया दूसर गाना गावे भैया। चिरैया पहले भजन गावत रहा अब हे भी पोकू गावे है। तुलुन समझ गए ले हमार बांध कहाँ लेकर जा है। तुलुन समझ गए लो तो हम काम बोले मांगिला हमारे जनता। Bloedsporen in de MC Polykliniek Apura in Inbraak भैया। Inbraak भइल है पॉलीक्लिनिक अपूरा में जहाँ पे भैया पोली ओके भी सब हमने निष्पोइती गए ला चोरी करे की पारासीटामोल भैया। और शुक्रवार और शनिचरवार के रात के 6 तारीख के वे को मीजी से सेंडिंग हैगा अने सुरनाम अपूरा में। और यहाँ बतावे भैया हुआ आईना फोड़ी से नेट फॉर मी नेट ऑन बकेंडर डार्डस अन खलासा राम हैवन इन खसलाखन और मेहरबान बेनत खान और बोले जब गए लेते बा मालूम पर उस सबके हाथ गोड़ कुछ कट गए है वन ब्लूथ स्पोर रहा फोर सो फेर बकेंड इज नीत नू मच वार तक बैठ कर नूमन कौन ची तो पहिए भैया। एगो दतरा के घर में खाली दवाई स्पोईती चंगी पहियो ना द ऑन देखिंग फन इन ब्राक्स को तू गईल है और ओमा ब्लूथ स्पोर पाई से अपरे से चोरवा जाए के हाथ गोर कटवाई के चल गए है बयान बट भीन जाएगा वही हतवा हूँ ही तोर खार फर बांध करी फर मुडलक अफ कोम्स तक फन दाद दिशिक mogelijk hebben verwond bij de forceren van toegang vanwege de afwekigheid van deze persporen en noodzakelijke spoonmakwerkzaamheden. Bleef de polykliniek zaterdag even bandraan, want ze hebben geen saaf zo traag gekregen door onze janta. Als je baat hebt, toen jano telwa hem lukken ben he. Olietanker in straat van Hormuz uitgeschakeld, want hoe heb je een beetje botelen hebben hoe je bij kabel heen ईरान के जगह हुआ हॉर्मुज में तो अमेरिका बोले है चेतन अख्तर अनफाल एगो एगो ओली टैंकर रहा जो पलौ के फरागली के जात रहा और एक स्क्राइब थे तरीकी नाल कमांडो अमेरिका के एगो F-18 जो रहा बोले ओके इस काकल के रिपोर्टिया दोन में प्रसिस मनुष्य मशीन कामर तराकन हेट इज अ सेवन स्केप dat US kent Tom uitschakel vroeg ter commando eraan toe. Ook meldde commando dat de 134 vaartuigen
zijn omgeleid nadat zij wel Amerikaanse bevel hebben opgevolgd. De VS hebben als reactie op de Iraanse blokkade van Straat Hormuz een eigen blokkade opgeworpen bij de Iraanse havens aan de voor de wereldhandel belangrijke zeestraat. Aurusep Tulojane Pahile Iran Bankelera op INA Amerika op een bunker deze hoepe. Iran is voor zijn olie-export voor grofweg 80% afhankelijk van die route. Vooralsnog is Iran daarom gedwongen olie die hij produceert op te slaan in plaats van het uitvoeren. Dat kan consequenties hebben als Iraanse olie opslaat. Op kontje heb je Iran op een bunker de raha. Sabke khatir ab Amerika okar bunker de iski tor joon tel nikre hai. Ab rahi des mein tu dhalle rahiye. Want ab oke tu bech na paiyo. Aise banchit hai. Hamare zunne walo. Hamara samachar mein. तो हम चलते हैं एक बॉलीवुड सॉन्ग आपको हम सुची तरी सुनाई दे कि ना सुनाई वांट हमारा समय भी धीरे धीरे तो आ रहा है।

दोस्तों, और आगे को अपना समाचार को हम सुनाते भैया। यहाँ पे बताए गए हैं, पॉलिसी वार्स क्यूड फॉर टू नहीं, मतलब ऑनलाइन अपलिफ्टिंग फिया फेसबुक। तो जाने फेसबुक पे भी लोग आजकल बहुत अपलिफ्ट करते हैं, इसके बारे में आप चौकस रहना, चौकस रहना। पॉलिसी बोले है फेसबुक पे आदमी ऑनलाइन चीज चूज बेचे, एक बारे में खूब मोई से तुलन छानबीन करके जाइए कि ने बहुत जबर अपलिखते रही हुए है। वेस अलर्ट पे ऑनलाइन आन कूपन में से द पॉलिसी ऑफिसर्स बेरकस ऑन फॉर सिक्स तक से सेंड बेर ऑनलाइन आन कूपन एंड एक्स्ट्रा वाक साम तो ब्लेफन वन एयर फॉर कूपर्स फॉर आ om betalingen vragen, controleer indien mogelijk de betrouwbaarheid van de verkopers en wees terughoudend met het overmaken van geld aan onbekenden. Bhaiya, zomaar paisa na overmaken kariye, oplicht bahut jada hue hai, to sipahi yahan pe aap log ko alert kiya hai, iske bare mein aap log ko jarur, jarur, jarur, jarur, yani ki apne aap ko chaukas rehna padega। तो दोस्तों यहाँ पे और बताए गए हैं, और आगे प्रेसिडेंट सिमोन अंडरवेज लेटल तो ग्रुई इन अनमूद बस्ट्रेडिंग। हाँ रे बाप रे बाप, ये भी हो रहा है स्कूल के लड़कन के बारे में। सिमोन्स बोले है ओपनिंग फॉर नेशनल अंडरवेज कांग्रेस इन द रॉयल बेडरूम फॉर होटल तोरारी का है बलंग फॉर इन्वेस्टियर इन अंडरवेज ऑन द स्ट्रीट फॉर द होस्ट स्टार्स फॉर अंडरवेज बेसिस फॉर ड्यूरसाम ऑनटूविकलिंग के बारे में है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हाँ तो यहां बतावे क्यूरी और खुद अपखलेदे बफोल्किंग फॉर्म द बासिस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब बफोल्किंग अपग्रुई ना भैया चलाक ना रहेगा, देश के ग्रोथ ना हो तो नेशनल अंडरवेज कांग्रेस भैल हैगा ऑफिशियल ओपन भैल 8 तारीख और 10 तारीख के। और वहां पे बताई गई है क्या को तेईमक नाम एडुकासी द वेक आउट आर्मूद ना द ग्रोथ फॉर द फोर आउटगंग। तो हाँ, एक बारे मिनिस्टर डेरेक क्यूरी बोले हैगा अंडरवेज के कि बोले दुई गो फंडामेंटल उद्गमपुंतन हैगा। और बोले द बविष्यमान बनाने के एगो खुद अपलाइडिंग जो लड़कन पावे आदमी पावे है, बोले तब तो देश के इकोनॉमी ग्रोई हुई। और बोले जब वो अपलाइडिंग तो के ना हैगा तो बोले कि कैसे तू देश के अपलाइडिंग ग्रोई कर पाइए। सुरीनाम में तो एक रवाज है भैया, जब तो के एगो पॉलिटिकल पार्टी है जेकर पीछे पीछे तू दौरे है तो के चाहे कोई अपलाइडिंग है ठीक से नहीं ना मैं पा जाइयो भैया काम करे करे। बोले एर माल मिस दोना लांती और रुकत जिंदगी भर सेस तक यारी तक वहां बैठी भैया, और चाहे वो काम कुछ कर पाई या ना कर पाई भैया। आप देखो यहां भैया क्यूबा के छौड़ी लोग के मेंशन हंडल भइल है, बुलाई से कुछ और छौड़ियन के बोले चल तू लोग के मोई मोई काम देबे और जाए के वहां पे हो प्रोसेस्ट वे में सबन धर देबे भैया। एकर बारे में ऑफ देले ट्रैक फिकिंग फन पर्सनल ते पी स्कोरस पॉलिसी बोले है गो सेशन 20 तक 11 के क्यूबान है और गो 55 तक 11 के सुरीनामर है। इस छौनी लाई से गयाना हुआ से क्यूबा से और लाई के नख क्लिप्स में इस सब के धरी से बॉर्डील करवावे हौसल करवावे फॉर द प्रोसेस टू वी। और बेन लंत में इस सब के भी धरे रहा भैया वन आइट फॉर लूप के ऑन द सुक इस कब्लिकन दैट अ फ्रॉ ऑन द फॉल्स फॉर वेंसलन सुरीनामर सो सेन खबरा eenmaal in het land zou zij gedwongen zijn geweest om als posters 2 werkzaam te zijn in nachtclub en een bordeel in binnenland. Binnenland, maar ja, volgens de politie was daarnaast sprake van vrijheidsbeperking, intimidatie en bedreiging. Ook zou het geld dat de slachtoffer verdiende stelselmatig door anderen zijn afgenomen. Hoe ze op een ding beetje kunnen pijzen, hoe pijzen ze van lille wat raar. सिपाही एकर बारे में पकड़ी से भैया बोले सेड ऑन द सुक फॉर द एक्सैक्ट ऑमस्टांडिगन वन एगो औरतिया ओमा से निकल के भग गए रहा और जाए के अनमेल कर रहा सिपाही में तब चीज ऑन द सुक भइल है। क्रॉस पुलिस से नाम बना दुर्गदन मेंशन हंदन अरेस्ट का मिस ड्राइव इज ए रूप दे सामने को अप अलर्ट ब्लेफन ते सामने लीफन कोंची भैया जाए अलर्ट करे जनता।
का जाने उस सब चीज के बारे में और सिपाही के चाहिए कर बारे में काम करे अलर्ट के मतलब है गा तो लोग जाने रहिए कि ये सब चीज हुए है और यहाँ बताए गए है श्री राम के बातचीत हो रहा है हमारी जनता। तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। घड़ी की ओर देखा जाए भैया तो पूरा एक घंटा हो चुका है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तुम्हारा मुलाकात फिर रेडियो के माध्यम से होगा। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। तो दोस्तों आप लोग को यही बताते हैं घड़ी की ओर देखा जाए तो 12 हो चुका है। तो यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अभी बीबी साहिबा रहीम बख्श भी आ गया है स्टूडियो में हमारे साथ है और अभी 6 बजे ये हमारा न्यूज को हम हेर हाल करेंगे। 1 से लेकर 3 बजे तक आप लोग लुफ्त उठाइए बीबी साहिबा रहीम बख्श का प्रोग्राम से।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा कि यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में। तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था। लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलेला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। बप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज़ में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 66 तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je station far on his tiny radio up to the program Gito Ka Sangam Rajan ke saath. Duniya mein logo ko dhoka kabhi ho jata hai. Main sochta hu duniya mein har ek insaan ko dhoka jo ek baar hoga. Ji haan dosto, har ek insaan dhoka duniya mein jo ek baar khaya hoga. तो अर्जुन बर्मन का सॉन्ग है. राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना. उन दिनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से यहाँ पर फिल्म पेश करते थे. अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे. तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था. सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है. फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में. राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था.

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, ये है पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

अलग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्रा से कहा, जितेंद्रा 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल तो चाहता है एंगल तुई माल फिर दर्शन आंख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों की खिदमत में अदाबर नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, जून की 9 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफ़र पर जा रहे हैं, सफ़र मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नैदरलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतज़ार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने, सब मिला जुला कर कोशिश करूँगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले भाई द्वारका के ज़रिए से प्रोग्राम को सुन रहे थे, चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से मेरे हिस्से का प्रोग्राम में गीत को सुन रहे थे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 1:22 व्यतीत हो चुका है। आप फाहुन रेडियो पर चुने हमारा पता है न्यूटन स्ट्रात नंबर 351 तक। टेलीफोन नंबर 365-2247 और दूसरा तार का नंबर है 362-2077।

आजान बोले मेरी चुनरी सनम, अभी आपने अभिजीत और साथ में अनुराधा श्रीराम से गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम है बीबी नंबर वन।

हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। अभी आपने गीत सुन रहे थे, इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गीत की बोल है, तुम्हारा चाहने वाले खुदा की दुनिया में मेरे सिवा कोई हो खुदा न करे।

तुम्हारा चाहने वाले खुदा की दुनिया में तेरे सिवा कोई न हो, खुदा न करे। अभी आपने आशा भोसले और महेंद्र से गीत सुन रहे थे, संगीतकार ओपी नैयर और इस गीत का लेखक है एस बी बिहारी। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिना, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिना, कभी बात करने की हजरत कभी देखने की तमन्ना।

0: दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अभी आपने यशुदास से गीत सुन रहे थे रेडियो फाउन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। वो जो जागते हैं रात तन्हा में, तन्हा रातों में, वो जो जागते हैं तन्हा रातों में, किसी के लिए वही जानता है किसी को खोने का दर्द क्या होता है।
1: मर कर भी तुमको

मेरा प्यार वो ऐसे मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देंगे। अभी आपने महेंद्र कपूर से गीत सुन रहे थे, संगीतकार ओपी नैयर और इस गीत का लेखक है एस हा बिहारी।

मैंने पायल तो झनकाई, अब तो आजा तू हर जाई। भी आपने पागुनी फाटक से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 8 मिनट बाकी है 2 बजने में।

तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर से गीत को सुन रहे थे।

जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, वे अपने अलका याग्निक से गीत सुन रहे थे। इस बार जो गीत हम पेश करने को जा रहे हैं, गाने वाली है आशा भोसले, और इस गीत है पेश है खास करके बारन दरख्त के रहने वाली राफिया रहीम बख्श के नाम, वो जो इंटरनेट द्वारा रेडियो को सुनते हैं। चलिए आपके नाम मैं इस गीत को पेश करती हूँ।

जब तक रहे तन में जिया, तू हमारे लिए मैं तुम्हारे लिए। अभी आपने आशा भोसले से गीत सुन रहे थे और ये गीत खास करके पेश था बारन दरख्त के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श, जो इस वक्त इंटरनेट द्वारा प्रोग्राम को सुनती है। इसमें देखा जाए तो 2:11 व्यतीत हो चुका है। आप चुन है रेडियो फाहन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में।

इस में तेरे इक्स में कर दिया बेखबर। अभी आपने केके के जरिए से एक गीत को सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 2:17 व्यतीत हो चुका है।

कुछ से बात करती हूँ या तो कोई प्यार का इरादा है। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, इस गीत का लेखक है इंदुवर। जब तक वो साथ है सब कुछ सही लगता है, जब तक वो साथ है सब कुछ सही लगता है, तेरे बिना तो ये दुनिया भी बेकरार लगती है।

दिल की आवाज अभी सुन मेरे फसाने पे ना आ। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे, जबकि 4 मिनट बाकी 2:30 बजने में हमारा और आपका मिलन 3 बजे है तक है। 3 बजे के बाद भाई राजन द्वारका प्रोग्राम को ऑफर लेगा। लोगों से इंतकाम मत लिया करो, लोगों से इंतकाम मत किया करो, खराब फल खुद ही दरख से गिर जाता है।

जा जा रे सुगना कहते सजनवा से लागी नहीं छूटे रामा चाहे जाए जिंदगानी। अभी आपने तलत महमूद और साथ में लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे।

एक साथी मेरा बड़ा पुराना, जाने क्यों साथ निभाना भी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथियों से ये गीत सुन रहे थे।

लाल लाल होठिया से बरसे ललैया, भी आपने तलत महमूद और साथ में लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

तुम्ही ने दर्द दिया है और तुम्ही आकर दवा देना, गरीब जान के हम को यूं मत सताना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में गीता दत्त से गीत को सुन रहे थे।

बार बार बगिया में कोयल न बोले। अभी आपने चलता गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के माध्यम से। देखा जाए तो 10 मिनट बाकी 3 बजने में, हमारा और आपका मिलन 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद भाई राजन द्वारका प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा और हमारे बाद अनाउंसर साथी राजन द्वारका प्रोग्राम को ऑफर लेगा। तमाम सुनने वालों के खिदमत में खुदा हाफिज़, नमस्कार।

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। हम यार है तुम्हारा की यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ। दोस्तों हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे। यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहरी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जोगीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोली ला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी, सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं सियासत तक तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

Ja, Pika, heb je station Fahon, hier staan in radio, op zo'n program, Gito Ka Sangam, Rajan ke saath. Duniya mein logon ko dhoka kabhi ho jata hai. Main sochta hu duniya mein har ek insaan ko dhoka jo ek baar hoga. Ji haan dosto, har ek insaan dhoka duniya mein jo ek baar khaya hoga. तो अर्जुन बर्मन का सॉन्ग है, राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना, उन दोनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से आप फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता, लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं एक दूसरा अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में। राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

आंखों ही आंखों में।

0: आँख में यारों का दिल खो जाता है।
1: दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाज़ों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, जी हाँ पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया, जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दो। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता है, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल तो चाहता है एंगल तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

हर एक काम जो रिव्यू किसे लेकर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाहौर हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर से न्यू सीफन तक 3 से 5 2 2 फी सीफ पर। आपको तार करना है

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखो तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूँ तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप

प्यार है नया एहसास है। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाजों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कर हूं मैं।
1: कक्कर हूं मैं, क्या बात है। हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

Selecta Beats Show Band. Selecta Beats Show Band Bubbling Mashup. News Song का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं

और क्यों खफा है तू हमसे, लगा है तुमसे एन बैठकाना जोंग दान किरव दित नोइट नोइट फॉर बैल लात खान फान शिरली गिर्ले।

और दोस्तों कोठड़िया की और ये इस गीत को गाया है राजेश शिवनंदन के बाद हम जाते हैं एक बार फिर और वो है सुजल उमराव की ओर।

लेकर आओ और बधौआ लेकर आओ। और ये बधौआ कौन लेकर आते हैं? वो आते हैं प्रदीप गोपी, आपको सुनाए हैं। तो दोस्तों

καλά να γιάνει ούτσινιτς, καλά να γιάνει για σορσιτιμάτα, διγε, χαμκό, απνία, ανσυρμάντε. तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम नमस्कार प्यार भरे राम सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम हमारा प्रोग्राम आप लोग हर शनिवार यानी कि हर शुक्रवार को और मंगलवार को सुन सकते हैं तो हम तुरंत चलते हैं सूरीनाम की ओर सूरीनाम की ओर हम चलते हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बीते हुए दिनों में सूरीनाम का डीएनएम स्टार्ट फॉर्म बस्कुल लुकिंग के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ है ओएम ने कागज पठाए थे तीन रोज तीन लोग को स्टार्ट फॉर्म बस्कुल लुकिंग में और यानी कि बस्कुल लुक करने को वो है समोहार जो और साथ साथ हुफ्दरान और नूर मोहम्मद तो इसके बारे में कितने लोग है कि जो देना में पॉजिटिव यानी कि खरोत दिल से यानी कि स्टेम करी से कि सबके माख ओ एम को ऑन द सुख करके और एक दो तीन लोग थे जो यानी कि कहा था कि चोरन के बचाओ चोर लोग को ना चाहेंगे सजा मिले के वो भी बात है एनडीपी के लोग कोई थे जो कहा था नहीं हुफ्दरात को नहीं चाहिए और सेल्फ समोहार जो ब्रंतो को भी ना सेल्फ ब्रंतो अपने आप को टेकन किया था कि मुझे स्टार बस्कुल में करो हम अपना सच्चाई रेक्टर को बनाना बताना चाहते हैं स्टार फैन बस्कुल के मतलब ये नहीं है कि आपको सजा मिल गया है वो देना को सिर्फ जो स्टेमिंग मांगा है कि तीन लोग को हम ओएम ऑनर सुख कर सकेला बस इतने में भाई कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए थे कि मुझे नहीं करना है स्टेम की हाँ या ना इसमें सबसे बड़ा लोग जो है सबसे बड़ा आदमी जो देना के फोर्स इतर है और वो है अधीन भाग गया था भैया और अपना हथौड़ी दे दिया था ऑफर ऑफर दे दिया था दूसर का वार नहीं मन फोर्स इतर का तो इसके बारे में एनपीएस का और डिफेंसी मिनिस्टर रोनाल्ड आसन कहा है कि देना फोर्स इतर अश्विन अधीन के बोले रसेल फरकेर थी का हंडल दौड़त ऑन थाउजेंड फॉर स्टेमिंग द साल तल ओपन बाय एंड स्टार फॉर बस्कुल स्टेलिंग फॉर द ड्रीमेंशन तो ये बात आसन ने कहा है औ डिफेंसी मिनिस्टर कि तू सबसे बड़कुआ बाटे देना फोर्स इतर बाटे और तू कुर्सी छोड़ के चल गए ले बाटे कि हमार ऊपर कोई उंगली ना रखाई कि हम बुल्ली बाटी कि चोर के पकड़ या चोर के छोड़ तो चोर के चाहे पकड़े के भैया लोन मौसी लोन कि चोर लोग के चाहेगा बचावे के तो अधीन छोड़ के कुर्सी चल गए रहा और कितना लोग उसमें रहा जो चोर के बचाई से मखरूत देश देना के लोग जो था वो कहा ना इस सब के स्टाफ फन बस्कुल लिखें कि चाहेगा ऑन द सुख करे के हम लोग थोड़ा बाटे यहाँ पे रेख्तर रेख्तर बपाल करेगा कि के एमा बदमाशी करी से के ना तो आसन बोले हैगा एनडीपी बोले हरदम बोले हम मांगेला फर्निविंग के हम मांगेला करप्शी बस्ट्राइड करे के एंटोसेट उप मबारे मिनिस्टर सुरीनाम वो ऑन अ फंकल के फन रेक्टर आलो रेमते के चाहे अनबीट करे के और बोले हैगा रेक्टर बपाल करी कि सबन फ्राइक स्प्रूक है कि ना और बोले ये खाद फॉर द फर्निविंग एंड
का बोलेगा आसन बोले है और बोलेगा तू कुर्सी मांगे बस्त्राइड करे और बोले यहाँ तू मांगे हैगा वी ऑस कुलर वर्ड दान फ्राई कस्टेल से ऐसा ने को प्रोग्राम में अधीन खाफ इंसेन overweging aan de beoordeling voor in staat van beschuldigingstelling gebaseerd moet zijn op een voldoende onderzoek en een zorgvuldige afgewogen oordeel bolle tap ukarer bolle zorgvuldig bolle je juanara to ik er waren mee Asen bolle he, bolle op basis van de beschikbare materialen kon hij niet te overtuigen konden bij voldoende was, voldoende aan de maatstaf die de wet voorschreef van de politieke bestuurlijke afwijking. Asen vindt het vooral teleurstellend Kisomo Harjo, die in zijn ogen zoveel belovend is geweest als parlementariër, nu in zo'n situatie is komen te verkeren en aankijkt tegen een mogelijke inverzekeringstelling. Jo Hardam Somo Harjo, Paul Somo Harjo, Apreke Klingboy Bolatra, Barka Batra, Akhut Ajaike, en Uphasgehe. To Yesabamat, he dosto, Jo Oudwen minister, en Asane. बताइए है तो हमारे यारो हम चलते भैया तीन डाकू के ओर भैया इसब ओतो पे जात रहा भाई ओतो पे जात रहा और देखे एगो ई बाइकर बैसिगरी वाला जा है आठ यूनी के बात है मौसी लोन तो अबे देखे जा है भैया बस इसब का करी से ओतो लेके बैसिगरिया के क्लेम रहे करी से करी से भैया बैसिकिया के और कटलीस निकार के गैला ओके रूफ करे भाई गैला ओके बैसिकिया वाला के रूफ करे और उतरे में स्कौतु ओसी से आवत रहा जे देखी सिटुवसिया त स्कौतु का करी से बस रुकल भाई ये लुंडवन जे देखी से ओतु हुआ भागल ओ तो लेके भाई देखे सिपाही आवे भगल है भैया क्वाटा के सिपाही ओके दौराई से भैया और जाय ओके क्लेम रहे करी से ओतुआ के जाय के क्लेम रहे करी से गा और आगे से चोरवन बैसिगिरिया के क्लेम रहे कर ले रहा और काबल कटली से के भरूफ करत रहा और बोले तू न फरदाख्त पुलिसी के देखी से इसे भगल ओ तो लेके सिपाही जाय के अब उल्टा ओतुआ के क्लेम करी से शार्लस बुरख में भैया शार्लस बुरख में जाय के ओके क्लेम करी से अब उइतलक तर होखता फन फिंदर ऑन द क्वार्टर वे क्लेम खरीदन ओ मा गाड़ी में पाई से भैया कापशोन सु जाने मुड़िया बजोन से हम पहले रे करिया स्वार्थ खसेक्स मास्कर तीन को कटलीस पाई से द आन खतरोफन खुदरन एन फुर्तोइगन सब पाई से दोस्तों और तीनों चोरन के तीनों लुटेरा के सिपाही गिरफ्तार कर लीसेगा और बोलीसेगा जो ई बाई करवा रहा जेके सब रूफ कर ओके चाहे सिपाही में मेल्द करेंगे On openbare minister verzekering gesteld onderzoek duurt voort. Bhaiya, dekho kya hoe hai. Baisigiri chalawe hai. Aur jai ke dekho roofer to ke baisigiriyo wal ke na chode bahut roof hove bhaiya sarnam desh mein. Abhi aur baat aap log ke roof ke bare mein hum batayenge dosto roof bahut jyada desh mein hue hai. Lekin aap log ko hum aur yahan hamara bhaiya Hanis Manorat bole hain वो रैग गोते क्यों अब देखो ये तो ये अंदर तक यारा के सिपाही भाई ई और एकर भाई गए लहा तेल भरे यानी कि को दुकान के आगे रहा सनिचर के बात है न्यूयॉर्क का फोंडो वेक में और बोले तेर होकते फा अधित नोख्त वेक इन रिसोर्ट लतूर और वहां पे बताई गई है वहां पे बताए सब भाई एगो सिपाही रहा और ओकर भाई भी रहा सुपरमार्केट के आगे पर गाड़ी पर कल ले रहा और एगो दूसर ओतो आइल है बस इस सब के पीछे के बम्पर पे मार दे इसे तस अब ये सिपाही रहा जेकर गाड़ी मारी से पुलिसी अमतना रहा तो ये अंदर तक यार ते जे गइल है ओकर ओतो पपीर मांगे हैं बस लगल इसे लड़ेस को उतुआ से और भगल है छोड़ के उतु हुआ तस को उतुआ लोस को दागी से भैया कि रुक जा ना भाग बस यू आइल तुरक बस को उतुआ के पिस्तौल वे छीन ले से दोस्तों लड़ाई फड़ाई में इसको उतुआ के पिस्तौल
तोलवे छीन लई से और छीन के भगल है तो इस कौतुन ओके दौराई से इस कौतु तो इंदर तक यार वाला और भैया जे दौराई से तो ओही के सिपहिया के पिस्तौल जो छीने रहा बस ओही में से चलते ओ तो में लगल सिपहिया के दागे लगल दागे भैया यहाँ बताओ जो पुलिस मान से तो अख्तर फॉल्किंग मार्वेर दार बे में से एक दिस वाफन बस कोतन और लगल एकर पेट में भाई एकर रेखतर बीन में लगल है राखत एरस्त खवन सेन ब्रूर ब्लीफ से ब्रूर ब्लीफ ऑन खदेत ओके ना लगल है और एक सबन ना है स्कित इन रेडन फरदख्तन हीरा वेख में ही सब घुस गए हैगा फरदख्तों जो दागे रहा सिपाही सखवा ओंदर सुप करे दोस्तों तो बताओ सिपाही यदे स्वामी फैलखना है तो भला हमारा हमारा जनता कैसे वहां पर फेल रहेगा। अब देखो आप लोग जानो है एनडीपी के फांदर फांदर सान भैया हाँ कैबिनेट के प्रेसिडेंट रहा बाउटर्स के इन्हें एनडीपी के ईशन फांदर संघ तो ईशन फांदर संघ भैया बोली से बोले है जब क्वालिटी है तो क्वालिटी एनडीपी के है तो बोले जितना इक्वन प्रत्यवन है जो क्वालिटी में छोटा छोटा से इतने एक आयल है बोल ओके चाहे सब एनडीपी के बात सुने की वन एनडीपी चोर के बचावे है तब बोले तू लोग के भी चाहेगा चोर वन के बचावे के वन लोग क्वालिटी में बांटे यहाँ बोले हेड कान एर बे हम नित इन दत क्वालिटी में फिर इन दर्तक से इतने मुझे ही उन बसलाइटन तक नहीं मन एन क्वालिटी इस फॉलो करने में यूज़ नोड ओम क्रुशियल बसलाइटन तक स्टूडेंट मन नित फॉर क्रिमिनल मेंशन आज ओ एम नामलेक दिर फ्राक मुझ इधर namelijk tegen de corruptie zijn or in Lim FM met Bolie Sega van de Sun NDP dat meerderheid van de zetel heeft en dat alle partijen zich bij de cruciale aangelegenheden moet neerleggen. Bolle, uw bos is den visie. Bolle, want die onthoudbaar al dus gewezen kabinetdirecteur en de NDP तो भैया लोन इसे बोले करप्शन बचाई और करप्ट लेंदे किसे बचावे है अने दित स्टेलन दैट पार्टी नीट आउट इन हुन एगन स्टैंडपॉइंट कुनन डोरड्रुकन डारम सिटन से यूज इन अ क्वालिसी फन द सन स्टेल दैट द डायरेक्टली साकन बिन इन अ क्वालिसी द क्वालिसी के बात चीत ने फन द सन सी द सामवर्किंग टुसन एनडीपी एंड द फ्री हैप्पी वेल सिटन मिस दैट हार्ड अस्प्राकन ऑन हेट ग्रोंड स्लाखलिकन। तो दोस्तों यहाँ पर तू देख सको है जनता भी देखे है कि एनडीपी इस नीड फॉर करप्शन बस ट्रेनिंग मेंशन से सही नामलेक द हुवद्रात नामलेक तो खान फर्दीदख कि ओके तुलो ना पकड़ो भैया तो जे हमार देश के लूटी से वो एक इसे बचावे और हमार जनता हमारे मीठा मीठा जनता ना देख पावे बिचारन और उस सबके छोटा छोटा पकेता कैर में भरमाए बा और जाए के इस सबके स्टेप

दोस्तों, और आगे को अपना समाचार को हम सुनाते हैं। भैया यहाँ पे बताए गए हैं, पॉलिसी वॉर्स क्यूड फॉर टू नहीं मतलब ऑनलाइन अपलिफ्टिंग फिया फेसबुक, तो जाने फेसबुक पे भी लोग आजकल बहुत अपलिफ्ट करते हैं। इसके बारे में आप चौकस रहना, चौकस रहना। पॉलिसी बोले है फेसबुक पे आदमी ऑनलाइन चीज उज बेचे, एक बारे में खूब मोई से तुलन छानबीन करके जाइए कि ने बहुत जबर अपलिफ्ट रही हुए है। वेस आर पे ऑनलाइन आन कूपन में से द पॉलिसी ऑफिसर्स बेरकस ऑन फॉर सिक्स तक से सेंड बेर ऑनलाइन आन कूपन एंड एक्स्ट्रा वाक साम तो ब्लाइफन वन एयर फॉर कूपर्स फॉर आ om betalingen vragen, controleer indien mogelijk de betrouwbaarheid van de verkoper en wees terughoudend met het overmaken van geld aan onbekenden. Bhaiya zomaar paisa na overmaken kariye oplicht bahut jada hue hai, to sipahi yahan pe aap log ko alert kiya hai, iske bare mein aap log ko jarur jarur jarur jarur yani ki apne aap ko chaukas rehna padega। तो दोस्तों यहाँ पे और बताए गए हैं और आगे, प्रेसिडेंट सिमोन ऑनडरवाइस लेटल तो ग्रोई इन आनमूदर बस्ट्रेडिंग। हाँ रे बाप रे बाप, ये भी हो रहा है स्कूल के लड़कन के बारे में। सिमोन्स बोले हैं ओपनिंग फॉर नेशनल ऑनडरवाइस कांग्रेस इन द रॉयल बेडरूम फॉर होटल तोरारी का है बलंग फॉर इन्वेस्टर इन ऑनडरवाइस ऑन द स्ट्रीट फॉर द होस्ट स्टार्स फॉर ऑनडरवाइस द बेसिस फॉर ड्यूसाम ऑनटूविकलिंग के बारे में है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हाँ तो यहाँ बतावे क्यूरी और खुद अपखलेद बफोल्किंग फॉर्म द बासिस फॉर इकोनॉमी से ग्रोई। जब बफोल्किंग अपग्रोई ना है भैया, चलाक ना रहेगा को देश के ग्रोई ना होई तो नेशनल ऑनडरवाइस कांग्रेस भाई रहेगा ऑफिशियल ओप भाई 8 तारीख और 10 तारीख के। और वहाँ पे बताई गई है क्या को तेईमा का नाम एडुकासी द वेक आउट आरमूद ना द ग्रोई फॉर द फोर आउट खंग। तो हाँ एक बारे मिनिस्टर डेरेक क्यूरी बोले हैगा ऑनडरवाइस के कि बोले हैगा दुई गो फंडामेंटल उत्गांगस्पिंटन हैगा और बोले द बविष्य मान बनाने के को खुद अपलाइडिंग जो लड़कन पावे आदमी पावे है, बोले तब तो देश के इकोनॉमी खुरुई हुई। और बोले जब वो अपलाइडिंग तो के ना हैगा तो बोले कि कैसे तू देश के अपलाइडिंग खुरुई कर पाइए। सुरीनाम में तो एक रवाज है भैया, जब तो के को पॉलिटिकल पार्टी है देकर पीछे पीछे तू दौरे है तो के चाहे कोई अपलाइडिंग है ठीक से नहीं ना मैं पा जाइयो भैया काम करे करे। बोले एर माल मिस दोना लांती और रोको तो जिंदगी भर सहस तक यारी तक वहां बैठी भैया, और चाहे वो काम कुछ कर पाई या ना कर पाई भैया। आप देखो यहाँ भैया क्यूबा के छौड़ी लोग के मेंशन हंडल भइल है, बुलाई से कुछ और छौड़ियन के बोले चल तू लोग के मोई मोई काम देबे और जाए के वहां पे हो प्रोटेस्ट में संबंध धर देवे भैया। एकर बारे में ऑफ द ट्रैक फिकिंग फॉर पर्सनल टीईपी स्कोरस पॉलिसी बोले है गो सेशन 20 तक 11 के क्यूबान है और गो 55 तक 11 के सुरीनामर है। इस छौनी लाई से गयाना हुआ से क्यूबा से और लाई के नख क्लिप्स में इस सब के धरी से बॉर्डील करवावे हौसल करवावे फॉर द प्रोसेस टू ए और बिन लंत में इस सब के भी धरे रहा भैया। वन आइट फॉर लूप के ऑन द सुक इस कब्लीकन दैट अ फ्रॉ ऑन द फॉल्स फॉर वेंसलन न सुरीनाम सो सैन खबरा eenmaal in het land zou zij gedwongen zijn geweest om als posters 2 werkzaam te zijn in nachtclub en een bordeel in binnenland. Binnenland, maar ja, volgens de politie was daarnaast sprake van vrijheidsbeperking, intimidatie en bedreiging. Ook zou het geld dat de slachtoffer verdiende stelselmatig door anderen zijn afgenomen. Hoe ze op een ding beetje hun paisa paotra, hoe paisa ze hebben lillewetra haar. सिपाही एक बारे में पकड़ी से भैया बोले सेड ऑन द सुक फॉर द एक्सैक्ट ऑमस्टांडिगन वन एगो औरत या ओमा से निकल के भाग गया रहा और जाए के अनमेल कर रहा सिपाही में तब चीज ऑन द सुक भइल है। क्रॉस पुलिस से नाम बना दिर्ग द मेंशन हंडन अरेस्ट का मिस ड्राइव इज एर रूप द सामली को अप अलर्ट ब्लेवन त सामली फन कोंची भैया जाए अलर्ट करे जनता।
का जाने उस सब चीज के बारे में और सिपाही के चाहिए कर बारे में काम करे अलर्ट के मतलब है गा तो लोग जाने रहिए कि ये सब चीज हुए है और यहाँ बताए गए है। श्री राम के बातचीत हो रहा है हमारे जनता, तो यहां से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करते हैं। घड़ी की ओर देखा जाए भैया तो पूरा एक घंटा हो चुका है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तुम्हारा मुलाकात फिर रेडियो के माध्यम से होगा। जोनी नंबर 1 है हमारा नाम।

और आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

छोड़ दो, ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचने स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बांति, चोली के बांति क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नो एंटी मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एंड थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन

ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और बनवारील बनवारी बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले अगले अगले गीत की ओर जाते हैं और वो है वो क्या है शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मजों की और कहानी है, फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही
0: सच्चे कहना।

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते हैं। ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारों? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म का नाम है खल नायक। इसमें सोन ओ फिल्म मार अतिश मोई नंबर लात वे दी ओक खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है, सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी, कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक

कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। नेगेटिव 100 का इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

गले लग जाना लग जा गले तो फिर ये मुलाकात हो ना हो। नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी। और ये गीत जो है दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है। किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। निखत इन होंदत एन फीन से अस्तक में से मैं निगाहें तेरी चेहरे से। परमा श्री मोहम्मद रफी एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहे तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है माइती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

0: नैनू में क्या आने वसी फिल्म के नाम है वारंट मेंसन, दैट इज इंग्लिश नाम, और अतन हेलम हुई जोंग जो आपके हम लिए चला चुका है. तो ये बात है हमारे यारो dan gaan we namelijk naar andere mooie nummer 4. Film ke naam hai Hong Kong 1962 ke. Ik was nog niet geboren mensen. En staat Oh My God Hasinoko aur Q de di tune hai. Aur is film mein jaise dikha hai. तो ये फिल्म हांगकांग है, परमाचिन मोहम्मद रफी आशा जी का फिल्म है, ओम प्रकाश एक्टर किया है इस फिल्म में, काम किया है, आओ सुना जाए.
1: ओह माय गॉड.

खुद से वादा कर, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, नहीं रहोगे कदम। खुद से वादा कर, खुद को ही ज़ुबान दे कि नहीं रोकेंगे अपना कदम, जब तक पहुँच नहीं जाता, जब तक पहुँच नहीं जाता मुकाम पर।

कोयल बोले और दुनिया डोले, हमको सुनाए सुने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी। और उसी फिल्म का नाम सरगम, फिल्म सरगम से हम आपको लेकर चलते हैं वही मशहूर गीत जो यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे। और गीत का बोल है दफली वाले दफली बजा।

हाँ बस उधर बेकरारी किस लिए है? बलबीर और मोहम्मद रफ़ी जी ने हम सबको ये सुंदर सा गीत और सुनाई है। दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है, यानी कि त्वे फॉर्मख, दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है किंतु स्वयं का कोई विकल्प नहीं है। ये बैंत अलीन एन एन एन पर्सोन, एन यूनिक पर्सोन, इसलिए सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ व प्रसन्न रखें, अपने आप को खसोंद एन खुलक रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।

ये गोटेदार लहंगा जो हमको गाकर और सुना दी है वो है रफ़ी जी और साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, समय के अनुसार शुभ शकुन के सपने भी होते हैं और अशुभ शकुन के सपने भी होते हैं। शुभ शकुन के सपन, दिन में हिरण वानर को देखना, दोपहर में नीलकंठ मुर्गे को देखना, रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ, राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शकुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन, यदि बाएं भाग वाला शकुन बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन, अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

जब कोई जल पीता दिखाई दे तो वर्षा होती है, जब कोई चरवाहा घास चराता गाय को दिखे तो चोरी का भय होता है, जब हम किसी को मांस खाता देखते हैं तो शरीर में चोट लगती है, जब हम किसी को अन्न खाता देखते हैं तो प्रेमी से मिलन होता है। सुनने वालों, वृक्ष के ऊपर मध्य जड़ में शकुन, जब हम किसी वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी या किसी जानवर को देखते हैं तो उसके भी अच्छे शगुन होते हैं। जैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे हाथी को बैठता देखते हैं तो अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, घोड़े को भी जब हम बैठा देखते हैं तब भी अच्छा शगुन होता है। रथ पर चढ़कर किसी का आगमन हो, जब हम किसी को देखें कि कोई रथ में चढ़कर आ रहा है तो उसका भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, किसी लंबी वस्तु कमल पत्र पर चौखड़ पर शकुन, नौका और पालकी में चढ़कर किसी का आगमन, जब हम किसी को नाव में बैठा देखते हैं और कोई पालकी में किसी को लेके जा रहा है या किसी की डोली जाती पालकी में तो वो भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, चंद्र नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या वाले का गमन करते समय यदि बायां स्वर चल रहा हो तो उसके बाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। सूर्य नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या करने वाला गमन के समय यदि दायां स्वर चल रहा हो तो उसके दाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। यदि रिक्ता स्वर चल रहे हो तो बाईं और दाईं दोनों ओर होने वाले शकुन निष्फल होते हैं। शुभ

शुभ स्थान में शुभ शकुन सुनने वालों, जैसा स्थान होगा उसके प्रभाव से भी शकुन अच्छे या बुरे होते हैं। ऊंचे मनोहर स्थान में, पवित्र भूमि में, जल भरे सरोवर के निकट, गोबर से लिपी जगह में, धान के खेत में, हरी घास के ऊपर, राजमहल, घुड़साल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थल, आहार करते समय। सुनने वालों, अगर ये सब चीज़ें हमें कहीं पे भी दिखें तो उसका मतलब है कि शुभ शकुन के आसार दिखाई देते हैं। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं, तो गीत के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे।

शुभ स्थान में शुभ शकुन अगर होते हैं सुनने वालों, तो अशुभ स्थान पर अशुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचे स्थान में मरे हुए शरीर पर सूली पर, शमशान में गधे के ऊपर, भैंसे के ऊपर, सुअर और ऊंट के ऊपर, सर्प की बामी पर, बामी में जहाँ पर सर्प सांप रहते हैं, सूखे पेड़ पर, उखड़े वृक्ष पर, जलती लकड़ियों पर, पत्थरों के ढेर पर, हड्डियाँ या मल के ढेर पर शकुन रोगी बूढ़ा दीन हो। ये जितनी भी बातें हैं सुनने वालों, अगर ये सब दिखाई दे तो समझो अशुभ शकुन है।

दाई बाई ओर के शकुन, जो दक्षिण अंक को स्पर्श करे वह शकुन सफलता देते हैं। जो शकुन पुरुष के लिए दाहिनी और शुभ होते हैं वही स्त्री के लिए बाई ओर शुभ होते हैं। स्त्री संज्ञ बाई, पुरुष संज्ञ दाई। स्त्री संग बाई ओर शुभ होता है। पौध की पिंगला, कोकला, छिपकली, सुकरी, छुचुंदर, ये सब जानवरों के नाम हैं। पुरुष संज्ञा दाई और शुभ, कौआ, कबूतर, तीतर, हंस। बाई दाई गति के शकुन, इनकी बाई और गति श्रेष्ठ। श्रीखंड, खजूरी, रूरू, बंदर, श्रीखंड, चाश, ये सब जानवरों के नाम हैं सुनने वालों।

नाम लेना, सुनना, देखना शुभ। सुनने वालों, कई चीज़ों के नाम लेना भी शुभ होता है और उन्हें सुनना भी शुभ होता है और देखना तो और भी शुभ होता है। जैसे बकरी, नेवला, इनकी ध्वनि शुभ होती है और इनके दर्शन भी शुभ होते हैं सुनने वालों। जैसे रीछ, वानर, लेकिन नाम लेना अशुभ। रीछ और वानर का नाम लेना अशुभ समझा जाता है लेकिन इनको देखना शुभ समझा जाता है सुनने वालों। विषम संख्यक दक्षिण में शुभ, नेवले, पक्षी, हिरण। बिल में निवास करने वाले, यानी जो लोग बिल में मिट्टी के नीचे घर बना के रहते हैं, वह यदि बाई और होकर गमन करे तो शुभ है। गमन से पहले बात के शकुन, जो शकुन गमन से पहले होता है वही शकुन गमन के बाद हो तो शत्रु का भय होता है।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवर बिल में रहते हैं और जो जिनका नाम लेना और सुनना भी शुभ समझा जाता है और उनको देखना भी शुभ समझा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दिन रात में विचरते शकुन, जो दिन में विचरते हैं यानी कि जो चीज़ें हमें दिन में दिखाई देती हैं, बगुला, बंजुल, कौआ, चकवाक, कोयल, मोर, गिद्ध, पौधकी, वानर, कपीजल, तोता, शिखरा, बटेर, गधा, ये सब जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं, उनके नाम हैं सुनने वालों। और जो रात में विचरते हैं, जो रात में दिखाई देते हैं, वो है पेचक, घुघू, घुघू मीन्स उल्लू, छिपकली, चमचेड़ी, लोमड़ी, खरगोश। जो दिन रात्रि में विचरते हैं, जो दिन और रात दोनों में दिखाई देते हैं सुनने वालों, वो है मनुष्य, नेवला, बिल्ली, बकरी, गाय, मृग, सिंह, हाथी, सर्प, कोयल, सारवत, हंस और सुअर। विभिन्न दिशाओं में मिलना शुभ। पूर्व में घोड़ा, सफ़ेद वस्तु। दक्षिण में मांस, शव। पश्चिम में कन्या और दरी। उत्तर में ब्राह्मण, साधु और गाय। सुनने वालों, यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमसे मिलते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। जैसे वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाए, सफ़ेद वस्तु कोई देखने को मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है। और दक्षिण की तरफ जाएं, अगर मांस और शव मिल जाए वो भी शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर जाएं, कोई कन्या मिल जाए, दरी मीन्स जैसे एक गलीचा होता है, कारपेट, वैसे एक दरी होती है, अगर वो दिखाई दे, कोई सिर पे उठा के लेके जा रहा है, तो वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में जाएं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधु मिल जाए और गाय मिल जाए, वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों।

हर दिल को खुशी से भरपूर कर देना, बस इतनी रहमत मेरे हजूर कर देना। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं।

रामचरितमानस तथा शकुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन शकुनों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह के अवसर पर अयोध्या से बारात के प्रस्थान के समय जो शुभ शकुन प्रकट हुए वो इस तरह से हैं। सुनने वालों, बनई न बर्तन बानी बर्ता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चापू बाम देसी ले, मनहु सकल मगल कही दे। तो जब ये शगुन हुआ तो उनको नीलकंठ गायें दिखाई दी रास्ते में। सुनने वालों, दहिन काग सुख सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। तो इसका उनको रास्ते में न्योला में नेवला दिखाई दिया। सुनने वालों, सनुकूल वह त्रिविधि बियारी, इस शब्द का अर्थ है कि उनको गोद में एक औरत बालक लेते हुए दिखाई दी। सगर सोबल अवकार नारी, जल से पूरित घड़ा देती एक स्त्री दिखाई दी। लोवा फेर फेर दरसु दिखावा, एक श्यामा पक्षी दिखाई दिया। सुरभि सन्मुख सीसु पियावा, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दी। मृगमाला फिर दाहिनी आई, इस शब्द का अर्थ है फिर उनको एक मृग हिरणों का झुंड दिखाई दिया। मंगल गंजनु दीनी दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विषि, क्षेमकारी पक्षी, एक पक्षी का नाम है। सुनने वालों, रास्ते में जब बारात जा रही थी राम जी की तो उनमें भी उसमें तब उनको क्षेमकारी ये पक्षी दिखाई दिया। स्वामवाक सुत्रु देखी, सन्मुख आयुधि अरुमीना, फिर उनको एक औरत दही लेती जाती हुई और एक औरत मछली लेके जाती हुई दिखाई दी। कर पुस्तक दो वीप प्रवीणा, फिर हाथ और दो दिखाई दिए। सुनने वालों,

रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर प्रकट शकुन। सुनने वालों, जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तब काफ़ी सारे शकुन दिखाई दिए, जैसे सुनत राम अभिषेक सुहावा, जब राज तिलक हुआ बजे घर घर अवध बधावा, तो अवधपुरी में शहनाई बजी, राम सिए तनु शकुन जमाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए, यानी कि उनके शरीर के अंग फड़कने लगे। भरत मिलन का सूचक शकुन, जब भरत से मिलन हुआ तो उसके भी सूचक हैं। पुलक सब प्रेम परस्पर कह ही, भारत आगमन सूचक अहि, भय बहुत दिन अति ब केसरी, शकुन प्रीत भेंटे प्रिय केरी, कर दूषण के लिए अंगहीन सूप नखा, अमंगल की सूचक थी।

श्याम घटा देखत नभकेरी तहम वासम धनु मनु उमेरी, यानी कि पंचवटी में शुभ खादि आगे कर लीती, अशुभ रूप ज्योति नशाहीनी, कि रूपनखा ने जो कुछ किया वो सब कुछ अविनाश का संकेत था सुनने वालों। राम ने सुवेल पर्वत शिविर से रावण का अभिमान चूर करने के लिए एक बाण छोड़कर लंका में पर्वत शिखर पर नृत्यशाला में बैठे रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए, जिसे कोई नहीं जान सका। कमस न भूमि न करत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कोई नैन न देखा, सोची सब निज हृदय विचारी, अशकुन भयो रावण ही भारी।

रावण के हाथ से हथियार छूट पड़ते हैं, रथ से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़कर भागते हैं, गीदड़ गधे गिद्ध भयानक शब्द करने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, उल्लू पक्षी भयानक बोली बोलते हैं।

दूसरी बार रावण जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो अशकुन होते हैं जिन्हें रावण ना मानकर युद्ध के बाजे बजाने का आदेश देता है। चलत हो ही तो ही अशुभ भयंकर, बैठी गृद उड़ही शिरन पर, भयाऊ काल वश का छू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। राम रावण युद्ध का संवाद त्रिजटा से सुनकर सीता ने मन में जब राम वियोग का दुख हुआ तो यह शुभ शकुन हुआ। जब अति भयउ विहर अर्धाहु, फरेक्यु वाम नैन अरु बाहु, शकुन विचार धरे और धीरा, अब मिली हृदय कृपालु रघुवीरा। सुनने वालों, अब मैं गीत की ओर बढ़ती हूँ और गीत के बाद फिर आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तो बहुत सारे अशकुन हुए और उनको रावण ना मानकर युद्ध के लिए चला गया और उसने बाजे बजाने का आदेश दिया। तो फिर त्रिजटा जी से बात सुनकर सीता माता इतनी खुश हुई और राम वियोग का दुख में भूल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। राम वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आगमन की कोई सूचना ना मिलने से सभी चिंतित थे। उस समय भरत को शुभ शकुन प्रकट हुए। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकहि बरहि बार, जानी शकुन मन हर्ष अति जागो करन विचार।

ठीक विचार। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि जब कोई छींकता है तो उसको बुरा भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वो दोनों कारणों से सही भी है और नहीं भी सही। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। अपनी छींक महा अशुभ होती है। अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है। कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दाहनी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछले सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी।

शराब संघनी, पेनस सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक तथा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या, विधवा, धोबीन, वैश्या, शूद्र की छींक विशेष अशुभ होती है। आसान, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारम्भ और बीज बोने के समय, युद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। छींकत नाइए, छींकत खाइए, छींकत जाइए सो, छींकत पर द्वारे ना जाइए चाहे लाख गरज भी हो। इसका मतलब है सुनने वालों कि नहाते हुए छींक आ जाए, खाते हुए छींक आ जाए, सोते हुए छींक आ जाए तो सही है, पर अगर किसी के द्वार पर जाए छींक आ जाए और लाख गरज हो तब भी नहीं जाना चाहिए।

सुनने वालों, जब हम सबको छींक आती है तो उसका फल भी मिलता है, और छींक आने पर कई कार्य हैं जो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। गमन करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कार्य में बाधा आती है। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न होता है पर वासी के बाईं ओर अशुभ मानी जाती है। कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ तो उसमें विघ्न होता है। व्यवसायिक कार्य, व्यापार वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। मरीज द्वारा दवा लेना, शीघ्र ठीक हो जाता है।

तुम अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो, प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में पहुंचा देगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ये सुंदर सा गीत रखा गया अभी, इसका कोई वजह भी होगा। बबली जी, आपके क्या कुछ पता है इसका वजह क्या है?
1: हाँ जी, इस गीत में दोस्ती है। तो
0: दोस्ती, फिल्म का नाम ही दोस्ती था।
1: हाँ जी, ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है, उनकी दोस्ती के बारे में है।
0: और खास करके मोहम्मद रफी का एक हिट्स सॉन्ग जो है, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गीत को कंपोज किए। पर दोस्तों, अभी इसके बारे में जरूर कुछ और बताया जाएगा। कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो एक कार्यक्रम है जिसमें विषय के बारे में बातचीत किया जाता है, और विषय जो रखा गया है तो आज का विषय में कुछ छोटा और जोड़ दिया गया है, क्योंकि आज अभी हाल ही से वो भी आया और हम सब सोचे कि क्यों ना इसे आज जोड़ दिया जाए। हमारी खोजी सेना ने तो विषय अभी आज से जब शुरू किया जाए रोज और बनाने के कार्यक्रम, तो लगभग 5 साल लग जाएगा और हम सब अपना विषय से और पूरा नहीं हो पाएंगे, पर कुछ कुछ नए चीजें आ जाते हैं और रख दिया जाते हैं। तो बबली जी, आज का विषय का पहला भाग में, क्योंकि अभी दूसरा भाग में हम सब जो हमारा नाम होता है, जो हमारा जिस नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उससे जुड़ा हुआ और कुछ संदेश रखा जाएगा। पर अभी उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक छोटा सा झलक जो आप रखने वाले हैं, कि जैसे आपने कहे कि खट क्या है ना?
1: हाँ जी, क्या आपको पता है संजय जी खाट क्या है?
0: खाट क्या है?
1: खाट भी कहते हैं, खटिया भी कहते हैं, और तो पंजाबी में मंजी भी कहते हैं।
0: मंजी कहते हैं। तो दोस्तों सुनने वालों, जैसे कि आप सुन ही लिए हैं कि खटिया क्या है और उसके बारे में कुछ हम सबको बबली जी संदेश रखने वाले हैं। तो बबली जी, ऐसा कीजिए, आपके ये बताइए कि आपके घर से और खटिया था इंडिया में कि नहीं?
1: उस और बढ़ने से पहले थोड़ी उसकी रूपरेखा बता दे कि खटिया है क्या।
0: जरूर, आप अवश्य रूपरेखा और सुनाइए।
1: हाँ जी, खटिया वो है जिसके चार पैर होते हैं और बीच में से उसको एक सन कहते हैं, एक तरह सा वो रस्सी, तो उससे उसकी बुनाई होती है।
0: खटिया यानी कि रस्सी से भी बनाया जाता है ना?
1: हाँ जी, लेकिन वो आम रस्सी नहीं होती, मजबूत सन की रस्सी कहते हैं उसको।
0: सन की रस्सी से बनाया जाता है?
1: हाँ जी,
0: ऐसा।
1: हाँ जी, और काफी मजबूत उसके पांव होते हैं, चार पांव होते हैं।
0: चार पांव होते हैं, हाँ, उसी कारण उसका नाम चारपाई भी कहा जाता है।
1: हाँ जी, चारपाई भी कहते हैं। बहुत बहुत सारे नाम हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा, अपने अपने नाम। तो सोने के लिए खाट हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज है। हमारे पूर्वजों को क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? वह भी लकड़ी चीर कर उसकी पट्टियाँ बनाकर डबल बेड बना सकते थे। डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लकड़ी की पट्टियों में कीले ही ठोकनी होती हैं। चारपाई भी भले कोई साइंस नहीं है, लेकिन एक समझदारी है कि कैसे शरीर को अधिक आराम मिल सके। चारपाई बनाना एक कला है, उसे रस्सी से बुनना पड़ता है और उसमें दिमाग और श्रम लगता है।
0: तो ये बात हो जाता है बबली जी कि उसे, जैसे कि क्योंकि मैंने भी एक बार एक व्हाट्सएप पर एक में हमने देख रहा था, तो उसमें भेजा गया था कि किस प्रकार से उसे बनाया जाता है।
1: हाँ जी, जब हम छोटे थे तो जैसे चारपाई टूट गई तो दोबारा से फिर बनाने वाले जैसे कारीगर होते हैं तो हमारी गली में चक्कर लगाते रहते थे कि चारपाई किसी ने बनानी है, तो जिसकी टूटी होती थी वो आवाज़ लगाते, आओ भैया इधर आओ, हमारी चारपाई बना दो।
0: और वो आ करके फटाफट बना देते थे?
1: हाँ जी, बनाते थे, यानी फटाफट भी नहीं, कई बार 1 घंटा 2 घंटे लग जाते थे।
0: ऐसा, तो वो बन जाता था।
1: हाँ जी, और हम सब भी चारपाई पे सोते थे भारत में, और सबसे बड़ी चारपाई मेरे पापा की थी।
0: तो चारपाई, वैसे तो चारपाई डबल परसोन, जैसे हम लोग यहाँ एंकल परसोन, डबल परसोन ऐसे भी कहते हैं।
1: हाँ जी, मेरे पापा की चारपाई आप समझ लो डबल परसोन ही थे।
0: ऐसा, क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों लिया?
1: वो मैं भी नहीं जानती, हम बचपन से ही देखते थे कि वो उसी पे सोते थे और बाकी सबकी छोटी चारपाई होते हैं।
0: तो दोस्तों, चारपाई के बारे में भी संदेश तो हो ही रहा है, पर कुछ और संदेश अभी हम सब, आज का विषय, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन से आपका जो, जैसे कि आप रविवार का जन्म हुआ है तो रविवार से क्या संबंध है, और ये जो नक्षत्रों में जन्म लिया जाता है, क्योंकि नक्षत्र जो हमें, जिसे हमारा नाम संस्कार भी रखा जाता है, तो उस ओर अभी संदेश हम सब रखने वाले। पर बबली जी, ऐसा क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत के, क्योंकि आज का जो तेमा है दोस्ती,
1: हाँ जी,
0: उस ओर क्यों ना एक और सुंदर सा गीत चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ जी, जरूर।
0: तो दोस्तों, ये गीत तो हम सभी जानते हैं और ये फिल्म भी हम सब देखे होंगे, क्यों ना हम ये गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: हाँ।

0: ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया फिल्म शोले से, जो 1975 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी अपना कला से प्रदर्शन दिए। तो बबली जी, ये सुंदर आज का जो आज का जितना गीते हैं सब दोस्ती के बारे में है, और कुछ ना कुछ संदेश जरूर उसके पीछे छुपा होगा। पर अभी आप हम सब के जो खटिया, उसके बारे में और कुछ सुनाने वाले।
1: हाँ जी जरूर। क्या आप जानते हैं संजय जी, जब हम सोते हैं तब सिर और पांव के मुकाबले पेट को अधिक खून की जरूरत होती है।
0: नहीं, ये बात तो मैं सो जाता हूँ तो इसके बारे में कोई चिंता भी नहीं करता हूँ।
1: हाँ जी, क्योंकि रात हो या दोपहर में लोग अक्सर खाने के बाद ही सोते हैं। पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक खून की जरूरत होती है, इसलिए सोते समय चारपाई की झोली ही इस स्वास्थ्य का लाभ पहुंचा सकती है। क्योंकि जो चारपाई होती है उसके बीच में एक थोड़ी गहराई सी होती है, उसे झोली कहते हैं। तो
0: जो खटिया में ऐसे जो रस्सी से, पर वो मैं तो हर बार सोचा कि वो सोते सोते ऐसे झोली की तरह बन गया।
1: नहीं नहीं, उसको ऐसे बनाते हैं कि झोली दिखाई देती है।
0: ऐसा?
1: हाँ जी, दुनिया में जितने भी आराम कुर्सियाँ देख लें, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है। बच्चों का पुराना पलना सिर्फ कपड़े की झोली का था, लकड़ी का स्पाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द कभी नहीं होता। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह दी जाती है।
0: यानी कि दोस्तों, जैसे ये भी आप सुन रहे हैं कि चारपाई, क्योंकि कितने लोग हैं जो हर बार कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है और सारा शरीर में पीड़ा हो रहा है, तो ये चारपाई एक उपाय है।
1: हाँ जी,
0: कि जिसे लोग उस पे सोने से वो पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं।
1: पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं और अरे आराम भी मिलता है। जो खून की, जो हम खाना खाते हो पाचन क्रिया, खाने को पचाने के लिए खून की जरूरत होती है। जब हम चारपाई पर सोएंगे तो उससे स्वास्थ्य पर का लाभ होगा। तो
0: ऐसा, तो दोस्तों जैसे कि इस बातों को, ये संदेश जो हमारे लिए रखा जा रहा है आज की चारपाई, जिसे हम खटिया से जानते थे, पर यहाँ तो हम लोग हॉलांत में ये तो मैं वैसे तो मैं देखा हूँ एक एक गोरे के घर पे खटिया।
1: हाँ,
0: पर सबके घर में तो वो नॉर्मल बैथ होता, कोई के घर में इकेया बैथ, तो कोई के घर में बॉक्स स्प्रिंग, तो कोई के घर में वाटर बैथ, तो अलग अलग प्रकार के महा महा बैथ है। तो इसमें ये जो आप कह रहे खटिया का,
1: हाँ जी,
0: क्या संदेश?
1: यही संदेश है कि खटिया अपने ज़माने में बहुत अच्छी, अभी भी अच्छी गांव में देखने को मिलती है खटिया। आजकल भारत में भी जाओ शहरों में नहीं है खटिया, चारपाई बहुत कमती है। आजकल क्या है, डबल बेड आ गए, लोग उस पर सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, कमती जगह घेरता है और उसमें कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। और चारपाई वैसे होती है उसमें कुछ भी नहीं रखा जाता, सिर्फ सोया जाता है, इसलिए शायद लोग समझते हैं कि चारपाई अब कमती कर दो।
0: जरूर, क्योंकि अभी समय के अनुसार लोग को बदलना भी चाहिए ना।
1: हाँ,
0: वहाँ भी एक भारत में मैंने देखा है कि एक बेड होता है जिसके अंदर से और बहुत सामान लोग,
1: हाँ उसी की बात करें, दीवान, उसको दीवान कहते हैं। हाँ जी,
0: तो उसी में सब ठंडी के समय आते तो सब ठंडी के गर्मी के कपड़े रख दिया जाता है, और ठंडी आते तो फिर गर्मी, यानी कि अदलाव बदलाव किया जाता है।
1: जब गर्मी आई तो सर्दी के रजाई वगैरह।

0: सारा कंबल वगैरह सब उसी में रख दिए, और जब गर्मी आई तो सर्दी के कपड़े उसी में रख दिए, ऐसे करते हैं। लेकिन एक बात है, डबल बेड के नीचे अंधेरा होता है लेकिन चारपाई के नीचे अंधेरा नहीं होता,
1: यानी कि उजाला ही उजाला।
0: हाँ, क्योंकि चारपाई ऊंची होती है, इसीलिए जैसे टेबल होता है ना, टेबल तो ज़्यादा ऊंचा हो गया, इतनी हाँ इतनी होती है।
1: तो दोस्तों, हम अभी और आज का संदेश, जो आज का विषय है, अभी उस ओर बढ़ने वाले हैं। पहले हम एक और सुंदर सा गीत चला देते हैं, और गीत के बाद में फिर ये कार्यक्रम को, जो चारपाई के बारे में अभी बबली जी संदेश सुनाने वाले हैं और सुना रहे हैं, तो आगे बढ़ाया जाएगा। पहले ये गीत जो राही मनवा दुख की चिंता, इस गीत को हम कितने बार सुन चुके हैं, पर आज फिर क्यों ना हम सब थोड़ा से ध्यान देते हैं कि गीत का बोल में संदेश क्या है। जब

0: दुख कौन आपके साथी है ये तो मुझे नहीं पता। बबली जी आपको पता कि सुख है साथी कि दुख है साथी?
1: देखा जाए तो दुख ज्यादा मिलता है और सुख कमती, तो दुख को ही अपना साथी समझना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग सुख को अपना साथी समझते हैं।
0: राही मनवा, दुख की चिंता सताती है कि सुख की चिंता?
1: गाने के बोल थे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: दुख तो अपना साथी है। दोस्तों ये सुंदर सा गीत एक स्वार्थवित फिल्म, जो काफ़ी पुराना फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिसका और कंपोजर रफी जी ने इस गीत को गाए है। पर बबली जी मैं देख रहा हूँ संदेशों में संदेश लेकर आप फिर तैयार हो गए हैं हम सबको सुनाने के लिए।
1: हाँ जी।
0: तो संदेश क्या सुनाने वाले आप?
1: संदेश है कि विजय कैसे प्राप्त करें।
0: विजय?
1: हाँ जी।
0: विजय कौन? विजय वो उसकी पति?
1: नहीं, विजय की।
0: विजय यानी कि यह संदेश मुझे भी पता है, समझ गया मैं कि अत खलुक अत जो हमें कुछ ही किसी चीज का और विजय प्राप्त करना है।
1: हाँ जी, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए और कुछ खास कार्य किया जाए।
0: बबली जी बात में बात यह है कि मैंने ये प्रश्न इसलिए रख दिया क्योंकि नाम के ऊपर हम सबका कभी कभी स्वभाव भी पड़ता है ना।
1: हाँ जी, जरूर।
0: आज का तेमा जो है अभी हम सबके और रखने वाले है कि हमारे नाम से जुड़े हुए,
1: क्योंकि जैसा नाम कहते वैसा काम, और इसीलिए कहते हैं माँ बाप को भी बच्चों के नाम अच्छे और सोच समझ कर रखने चाहिए कि क्या नाम रखें।
0: पर आजकल माता पिता शायद इस पे ध्यान नहीं देते होंगे दोस्तों। तो जरूर अगर आप इस बात को सुन करके और कम से कम कहीं और कुछ ऐसा वैसा नाम रखने वाले हैं तो उस पे परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि आज जो विषय है अभी उसके बारे में हम सब रखने वाले हैं। और नाम से जुड़ा हुआ आपका जो खलुक होता है, आपके जो भोग होता है, तो उस पे और ध्यान दिया जाएगा अभी का आगे का कार्यक्रम।
1: हाँ,
0: पर विजय कैसे प्राप्त हो सकता है बबली जी ये आप सुनाने वाले?
1: हाँ जी, जो उस और बनने से पहले मैं ये कहने लगी थी कि अब जैसे पुराने जमाने में लोग बच्चों के नाम कल्लू ऐसे रख देते थे, और बच्चा होता था सफेद,
0: तो कल्लू क्यों रखा?
1: कि नजर ना लगे,
0: ऐसा।
1: हाँ जी, इसलिए कल्लू नाम रख दिया, कालिया रख दिया।
0: नहीं, पर ज्यादा तादाद में देखा जाए कि सूरीनाम में जैसे भल ना, सूरीनाम में जैसे कि पहला बेटा होता था तो उसका नाम मुन्ना रख दिया जाता। हाँ, था
1: पुराने जमाने में गुड्डी, भारत में तो गुड्डी और मुन्ना बहुत चलता था,
0: मुन्ना। हाँ, ऐसे रख दिया जाता।
1: हाँ,
0: था। पर वो तो एक रूप नाम होता था ना।
1: हाँ,
0: वो नक्षत्र से वो जुड़ा नहीं,
1: और नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: वो पंडित द्वारा नहीं रखा जाता।
1: नहीं, नहीं, नहीं, वो तो अपने वैसे माँ बाप ने रख दिया
0: प्यार से।
1: हाँ जी, प्यार से। हाँ जी, और जैसे गोरा तो गोरे नाम रख दिया,
0: ऐसा।
1: हाँ जी, गोरे काले ऐसे था।
0: तो पर जो विषय आप रखने वाले हैं कि विजय कैसे प्राप्त हो सकता है, तो विजय के बारे में हमें जरूर कुछ जानकारी दीजिए।
1: हाँ जी, जरूर। एक समय की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। मेंढक आप जानते हैं?
0: मेंढक बोले तो
1: कीकर।
0: कीकर यानी कि मेघा।
1: हाँ जी। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंभा भी लगा हुआ था। खंभा बहुत ऊंचा था और उसकी सतह भी चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए। इसमें भाग लेने वाले को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रतियोगिता का दिन फिक्स कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आया, खंभे के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से सभी कई मेंढकों इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए।
0: यानी कि मेंढकों का और सभा लगा।
1: हाँ जी, सभा लगी कि किस दिन रेस की वो प्रतियोगिता होनी है, और उन्होंने उसकी घोषणा भी कर दी, और आसपास के तालाब में से सब में से मेंढक वहाँ पहुँच गए।
0: तो दोस्तों ये मेंढक का समस्या थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आज का तेमा जो है की दोस्ती और जो गीतों का है, तो क्यों ना एक और गीत और चला देते हैं। तो ये मेंढक का कार्यक्रम तो कुछ लंबा चौड़ा लग रहा है ना बबली जी।
1: हाँ जी, लगता तो है।

0: ये सुंदर गीत निकाला गया फिल्म का नाम जो है याराना, और फिल्म याराना से ये सुंदर गीत को निकाला गया जो किशोर कुमार ने अपने आवाज़ से और ये रखे। बबली जी, जो मेंढक का और सभा लगा है, मेंढक का सभा में क्या होने वाला है ये तो भला हम सब के सुनाइए, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुआ है और संदेश क्या है, क्योंकि हमें जिसका विषय आपने कहा कि विजय कैसे प्राप्त करते
1: हैं। हाँ जी, मैडम की सभा लग गई, उन्होंने घोषणा कर दी कि किस दिन रेस होगी प्रतियोगिता, और सब मेंढक इकट्ठे भी हो गए उस दिन, और सब वहाँ बैठ के अब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रतियोगिता शुरू हो।
0: प्रतियोगिता यानी कि अभी जो आप कह रहे हैं तो उसे हिंदी में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तरह मुश्किल शब्द है ना।
1: हिंदी में प्रतियोगिता ही कहते हैं कि किसी चीज में भाग लेना,
0: जैसे वेस्ट्राई।
1: हाँ जी, हिस्सा लेना, उसे प्रतियोगिता। हाँ जी, प्रतियोगिता कहते हैं। माहौल में सर गर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था, प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक इस खंभे के ऊपर पहुंच पाएगा। चारों ओर यही शोर हो रहा था, अरे यह बहुत कठिन है, वो कभी भी इसे नहीं जीत पाएंगे, ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इतने चिकने खंभे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और यह भी हो रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करते वो थोड़ा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाते।
0: तो बबली जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि चिकने एक शब्द है जिसे शायद हम लोगों के लिए थोड़ा से मुश्किल हो सकता है। चिकने कहते हैं जो जिसे खलत कहते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जैसे साबुन से आप हाथ धो और
1: चिकना हो जाता है।
0: चिकना
1: हाँ,
0: कहा जाता है।
1: तो उसमें हम हाथ रगड़ते हैं तो फिसलते हैं, तो जैसे खंबा, पाल, पाल भी कई ऐसे एकदम साफ सुथरे और चिकने होते हैं।
0: ऐसा बात है। तो अभी तो अब संदेश में और क्या संदेश रखने वाले हैं?
1: हाँ जी, कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो अब जो भी मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी यह सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया।
0: यानी कि जो मोती फातसी रहा, मोती फातसी भी और कमती होने लगा।
1: हाँ जी, लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंभे के ऊपर पहुंच गया।
0: तो ये बात है कि प्रयास करने से बहुत, क्योंकि बहुत जैसे कि विषय, जैसे संदेश है कि विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत मेहनत करने पर।
1: हाँ जी,
0: यानी कि अपना, और कभी हम लोगों हर बार ये ऐसा होता है कि जो एक बार नहीं हुआ तो दूसरा बार कोशिश करते, दूसरा बार नहीं हुआ तो हम जल्दी से ये कह देते हैं कि दिस इज नीड्स फॉर मई एंड लात हैथ मार शैतान। तो दोस्तों, अभी तो ये मेंढक के माध्यम से ये संदेश जो बबली जी हम सब के लिए रख रहे हैं, क्यों ना बबली जी एक और गीत के ओर, और जिसमें दोस्ती जरूर होना चाहिए।
1: हाँ जी,
0: क्योंकि आज सभी गीतों में दोस्ती का कुछ ना कुछ संदेश है।
1: जरूर,
0: और वो संदेश क्या है बाद में बताया जाएगा, क्या संदेश है। हम लगा देते हैं, वो रख देते, वही गीत एक नया फिल्म से निकाला गया।
1: हाँ जी, जरूर।

0: ये सुंदर गीत जो फिल्म आर आर आर से निकाला गया दोस्तों, और एक नया फिल्म है, बड़ा सुंदर रूप से ये फिल्म में और ये गीत को रखा गया है। बबली जी, अब जैसे कि संदेश में आपने संदेश रख दिया कि प्रयास, बार बार प्रयास करने करने से और जाकर के छोटा मेंढक वो, और जैसे कि आपने कह रहे थे कि चिकनी सा और
1: चिकना सा खंभा था
0: उस पर चढ़ गया।
1: हाँ, चढ़ गया,
0: तो यानी कि विजय प्राप्त कर लिया।
1: हाँ जी, कोशिश उसने की और कोशिश में कामयाब हुआ,
0: कोशिश से कामयाब हुआ। तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमें अपना कोशिश से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करते रहे उससे हम अपना कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से बबली जी संदेश तो कुछ अभी और बाकी है ना?
1: हाँ जी, थोड़ा सा और बाकी है,
0: तो सुना दीजिए हमारे सभी सुनने वाले को और हमें भी, यानी कि ये संदेश सुनने में ये बड़ा अजीब सा कि मेंढक के माध्यम से ये और संदेश को बनाया गया।
1: हाँ जी,
0: मेंढक जो कहते हैं मेघा केकर नहीं दलास,
1: हाँ जी
0: केकर को,
1: हाँ जी, और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया, कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त करी। तभी पीछे से किसी ने बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, यह तो बहरा है, आपको समझ आया वो कैसे जीता। जी हाँ, उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले थे, टांग खींचने का मतलब कि जो कहते थे कि ये नहीं जीत पाएंगे, इनकी कोशिशें बेकार है,
0: यानी कि सभी जो यश देमोती फेर करते थे।
1: हाँ जी,
0: और ये मेंढक जो बिल्कुल नहीं सुना।
1: ना, क्यों नहीं सुना, क्योंकि वो बहरा था, कानों से उसे सुनाई नहीं देता था, इसीलिए उनकी आवाज उसको नहीं सुनाई दी, जिससे वो नहीं सोच पाया और वह अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस कर पाया और जीत गया।
0: तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि हम किस में लगे हुए हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो लोग हमें सुझाव देने लगते हैं, कोई सुझाव देने लगते हैं, कोई इसी प्रकार से और डिमोटिव फेयर करने लगते कि ये ना हो पाएगा तुमसे। तो वो मेंढक के माध्यम से जो उसका ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने मेहनत करके और जा करके अपना लक्ष्य जो विजय था और जा करके प्राप्त किए। पर बबली जी संदेशों में संदेश और क्या है
1: ना, संदेश तो हो गया, अब इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। वही जो आपने अभी बोला वो भी सही बात कही आपने कि हमारे अंदर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है और हम शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अपने आसपास के ज्ञान चंदों के कारण और अपने माहौल के कारण हम अपना काम या तो शुरू नहीं करते या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं।
0: ऐसा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि ऐसा हर बार होता है कि लोग ज़्यादा तादाद में ऐसा हमारे विजय, क्योंकि एक एक एक बार एक सत्संग में हमने ये इस बात को भी सुने थे।
1: हाँ जी,
0: कि जहाँ सच्चाई होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ पर और जा करके आगे में जा करके विजय को प्राप्त करते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो इस प्रकार से जहाँ मेहनत है और ये संदेश के माध्यम से और जो औरों को ना सुने अब मेहनत करते रहे,
1: सही बात,
0: तो हमारे विजय का लक्ष्य होता है। तो वो
1: सही
0: जो जा करके
1: कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग तो हमेशा उल्टी बात ही ज़्यादा करते हैं। कोई 100 में से कोई 20% होंगे जो कहेंगे हाँ कि ये बात सही है, ऐसे तो करो।
0: मेरे ख्याल से आपने कुछ ज़्यादा ही कह दिए पर दोस्तों इन बातों पे ध्यान देना चाहिए और ये संदेशों में संदेश जो छोटा छोटा हमारे संत मुनियों के लिखे हुए, तो हम उस पे थोड़ा से ध्यान देते हैं। बबली जी, आज जो सभी गीतों में यही आता है बार बार कि फ्रेंडशिप,
1: हाँ जी,
0: दोस्ती दोस्ताना, तो हर बार यही आता है, क्यों ना एक और उसी प्रकार के गीत सुनते हैं।
1: हाँ जी, जरूर।

0: दोस्तों ये सुंदर गीत हम सब चलाए और दोस्ती के नाम पे, और अभी कार्यक्रम जो आगे बढ़ेगा जिसका और आज विषय है कि जिस दिन से आप जिस यानी कि आप जैसे कि रविवार बुधवार और शनिवार कोई भी दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन से और जुड़े हुए क्या क्या है आपका, और उसके अंतर्गत में अभी संदेश रखा जाएगा। पर उस ओर बढ़ने से पहले कमर्शियल्स और न्यूज़ की ओर बढ़ना है, तो पहले न्यूज और कमर्शियल्स और फिर उसके बाद में हम सब फिर आपके साथ ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो जाएंगे। ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है और जरूर लाइव फनोई दनहाख न्यूटन स्ट्रात 25 से, और ये कार्यक्रम को यहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। दोस्तों आज का विषय के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, और बबली जी आज का विषय में खास करके जो हमारे हफ्ता में कितने दिन, 8 दिन होता है कि 7 दिन होते कि 6 दिन,
1: 7 दिन,
0: और ये 7 दिनों के अंदर अंदर में हम सभी का जन्म हुआ,
1: 7 दिन है तभी उसको एक सप्ताह कहते हैं,
0: एक सप्ताह कहते हैं।
1: हाँ जी, और महीने में 4 सप्ताह होते हैं,
0: महीने में 4 सप्ताह। तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि ये जो जिस दिवस का आपका जन्म हुआ ना,
1: हाँ जी,
0: तो आप विषय रखने वाले हैं कि जोन दिन जिसका जन्म हुआ उससे क्या जुड़ा हुआ है, क्या उसका स्वभाव जुड़ा हुआ है उसमें, और हमारे संतों द्वारा जो लिखा जाता है, पंडित जी ने और ख़ास करके ये तेईमा को रखे थे, तो हम सभी सुनने वालों के लिए अभी रखने वाले हैं ये कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है,
1: हाँ जी, कि उस दिन से उस दिन आपका स्वभाव कैसा है और आपको क्या चीज मिलेगी और उसका उपाय भी है, आपको क्या करना चाहिए,
0: तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए खोज करके रखा गया है,
1: हाँ,
0: और अगर इससे आप सहमत नहीं हो तो ये हमारा बात नहीं है, पर ये बात हो जाता है हमारे संत मुनियों ने जितना चीज हम सब के लिए खोज कर रखे हुए, तो उसमें जब विश्वास रखेंगे तो संदेश जरूर निकलेगा। तो बबली जी क्यों ना अभी पे आज जो हमारे सभी गीतों मिले हुए दोस्ती से,
1: हाँ जी,
0: तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ जी जरूर।